सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और

FM 100.1 MHz पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 और 16 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: वंदना कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
0: गाते गाते गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: इसी के साथ आज की वंदना अब यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन बिंदु।
1: किसी भी काम या क्षेत्र में सफलता पाने की यदि कोई कुंजी है तो वो है एकाग्रता। एकाग्रता से किए गए काम में सफलता न मिले ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। एकाग्रता और तन्मयता से मनुष्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन कर सकता है। इस संसार में अनगिनत संपत्तियां बिखरी पड़ी हैं जिन्हें हम एकाग्रता की शक्ति से समेटकर समुचित लाभ ले सकते हैं। एकाग्रता से अपना काम करने में एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है और उस स्थिति में व्यक्ति अपने आदर्शों की उपलब्धि का अवसर प्राप्त करता है और कल्पनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास करता हुआ सफलता के मार्ग पर आगे चल देता है। एकाग्रता से किए गए काम हमेशा पूरे होते हैं और उन्हीं में सफलता भी मिलती है। एकाग्रता वो केंद्र बिंदु है जिसे हम लक्ष्य तक पहुंचने का आरंभिक स्थल कह सकते हैं। इस संबंध में महाभारत की एक प्रचलित कथा है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को आखेट के लिए वनोद्यान ले गए। समीप ही एक वृक्ष था जिस पर एक चिड़िया बैठी थी। गुरुदेव ने सभी शिष्यों से कहा, वृक्ष पर जो चिड़िया बैठी है तुम्हें उसकी आंख को अपना निशाना बनाना है। क्षण भर बाद उन्होंने प्रत्येक शिष्य को बारी बारी से बुलाया और प्रश्न किया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एक ने कहा, मुझे वो वृक्ष, उसकी शाखाएं और चिड़िया दिख रही है। दूसरे ने कहा, मुझे केवल वृक्ष की शाखाएं और वो चिड़िया नजर आ रही है। तीसरे ने कहा, मुझे केवल चिड़िया ही दिख रही है। इसी तरह सभी ने जिन्हें जो दिख रहा था उसका वर्णन किया। अंत में अर्जुन की बारी आई। जब यही प्रश्न गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन बोल उठे, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की वो आंख दिखाई पड़ रही है जिसे मुझे अपने तीर का निशाना बनाना है। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव का मन हर्ष से भर गया। वे बोल पड़े, अर्जुन, धनुर्विद्या के सच्चे और वास्तविक अधिकारी केवल तुम हो। जिसे अपने लक्ष्य के सिवाय और कुछ नहीं देखता सफलता का सच्चा अधिकारी वही हो सकता है। अर्जुन के समक्ष लक्ष्य था, केवल लक्ष्य, और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए थी महान एकाग्रता। इस प्रकार की एकाग्रता ही हमें आदर्श पर पहुंचाती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एकाग्रता की शक्ति अर्जित कर ली वो संसार का बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जीवन में जिसका एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, वो कभी न कभी उसे प्राप्त कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो जीवन में अपने लिए केवल एक व्यवसाय, एक कार्य का ही चयन करे और उसमें तब तक निरंतर प्रयास करता रहे जब तक कि सफलता उसके कदम न चूम ले। जो संसार की दूसरी सभी बातों को भूलकर एक ही कार्य में एकाग्रता से लग जाते हैं वे कभी न कभी उस कार्य के विशेषज्ञ हो जाते हैं। प्रतिभा, प्रयास और एकाग्रता के मिलन से सफलताओं का सृजन होता है। एकाग्रता लक्ष्य प्राप्ति का अजेय माध्यम है। अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरे के लक्ष्य की ओर आकर्षित होने वाले व्यक्तियों की संख्या इस संसार में कम नहीं। ऐसे व्यक्ति जीवन भर असफलताओं का बोझ ढोते ढोते संसार से कूच कर जाते हैं। इस अप्रिय प्रसंग से बचने का एक मार्ग यही रह जाता है कि हम अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करें, उसे प्राप्त करने में एकाग्रचित्त होकर जुट जाएं, तभी सफलता संभव है। इतिहास विख्यात नेपोलियन बोनापार्ट को कौन नहीं जानता। नेपोलियन की विजय का श्रेय उनकी एकाग्रता को जाता है। जिस समय वो अपनी सामरिक योजनाओं पर विचार मंथन करते थे तब संसार की दूसरी समस्त बातों को भूल जाते थे।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु, मीडियम वेव 330.03 मीटर।

आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। 8:45 पर कार्यक्रम होगा हिट सुपर हिट। प्रातः 9:50 पर, दोपहर 5:55 पर और रात्रि 8:55 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह को। दस बजकर 5 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। 11:05 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक रंग। 11:30 पर कार्यक्रम गीतांजलि। 12:30 पर गाने सुहाने। 1:15 पर नारी जगत कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है वन महोत्सव सप्ताह, मिशन लाइफ एवं नगर हरित अभियान, साथ ही किचन वेस्ट से जैविक खाद कैसे बनाएं और इंडोर पौधों के स्वास्थ्य का रखें ध्यान। 1:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या। विशेषज्ञ हैं सुमिता त्रिपाठी। शाम 5:05 पर युवाणी कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा वनों की रक्षा सबकी जिम्मेदारी, युवाओं में बढ़ती नशे की लत, साथ ही कचरा प्रबंधन। शाम 5:35 पर ग्राम जगत कार्यक्रम में आज का विषय होगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव से ब्रजेंद्र नारायण की भेंटवार्ता। विषय होगा नाक कान गला की प्रमुख समस्याएं और उनका निदान। साथ ही आप सुनेंगे अंजनी कुमार से लोक गीत। शाम 6:10 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा बीज शोधन का महत्व। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे वार्ता का विषय होगा श्री अन्न भारतीय कृषि की अनमोल धरोहर। वार्ताकार होंगे हर्षित पालीवाल। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता आंवला की प्रजातियां और उनको लगाने की विधि। भेंटकर्ता होंगे विनय कुमार। आपसे बातचीत करेंगे श्याम राज सिंह। 6:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोकधारा। आज के कलाकार हैं रमेश प्रसाद। शाम 7:00 देश हमार कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे राम कृपाल यादव से काव्य पाठ। शाम 7:10 पर प्रादेशिक संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे राजस्थानी लोकगीत। 7:31 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी कव्वालियाँ। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे विदुषी श्रुति सादोलिकर का राग नेकी कान्हड़ा। श्रोताओं, ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं मानस गान।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं। रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरि भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे मानस गान।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
6: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
7: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
6: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
7: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
6: गाने के बोल,
7: गीतकार
6: और संगीतकार,
7: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
6: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
7: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
6: गाते गुनगुनाते
7: सुनिए सुबह 10:05 पर।
6: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
2: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
1: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
2: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
1: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
2: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ

0: गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88,000-3,000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकहि पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की।

0: दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईजी ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said, the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the process

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्री राम मंदिर

0: चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीवीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
1: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कल जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लोकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लोकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना ने 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लिया है।
3: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में

0: पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीबों को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी।

0: के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत अच्छा योजना। अब आपका बीच भारत, बीच उत्तर प्रदेश और बीच राज्यसभा बने।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और कल की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून के आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों, सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए SIT दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं संजोग फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्णन ने, संगीत मदन मोहन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत संजोग फिल्म से। संगीत था राजेंद्र कृष्णन का, संगीत था मदन मोहन का, बोल राजेंद्र कृष्णन के। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में बुढ़ा मिल गया फिल्म से। संगीत आरडी बर्मन का है, बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

बुढ़ा मिल गया फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीतकार थे आरडी बर्मन, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में अनपढ़ फिल्म से। बोल राजा मेहंदी अली खां के हैं, संगीत मदन मोहन का।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: जिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत पेइंग गेस्ट फिल्म से। संगीत एसडी बर्मन का था, बोल मजरू सुल्तानपुरी के। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जहरीला इंसान फिल्म का गीत, जिसका संगीत दिया है आरडी बर्मन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, किशोर कुमार की आवाज़।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत जहरीला इंसान फिल्म से। संगीत आरडी बर्मन का था, बोल आनंद बख्शी के। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म से।

महेंद्र कपूर के गाए हुए हमराज फिल्म के इस गीत के साथ ही पूर्वा सुहानी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन

0: के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे।

0: ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15-27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announced a schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly

140 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान

आइए सबसे पहला गीत हम सुनते हैं जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से लता मंगेशकर कुमार सानू की आवाज़, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीतकार जोड़ी है जतिन ललित की।

0: कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे जतिन ललित। कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH service DD

0: डायरेक्ट प्लस की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।

हिट सुपर हिट कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म से। अनुराधा पौडवाल और अभिषेक बच्चन की आवाज़ है, बोल हैं समीर के, संगीत जतिन ललित का।

हाँ, मेरा दिल कह रहा है मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है मैं तेरे सुर्ख नरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है तेरी पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों के चंदन हाथ पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गेसु सुहाने, इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रूप निहारूं।

अनुराधा पौडवाल और अभिषेक बच्चन की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म से। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे जतिन ललित। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म से। कुमार सानू की आवाज़, बोल समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
1: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
0: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
1: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरयार।

हिट सुपर हिट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये गीत आंदोलन फिल्म से, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़, संगीत नदीम श्रवण का, बोल लिखे थे समीर ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं साजन चले ससुराल फिल्म से।

नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ गीत आप सुन रहे थे साजन चले ससुराल फिल्म से। इस गीत को लिखा था समीर ने, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही हिट सुपरहिट कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं जिले की हलचल लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और संत कबीर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को सहारनपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 613 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
1: पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के बेसिक विद्यालयों का व्यापक कायाकल्प हुआ है और सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने का आह्वान किया। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा कि पहले दंगे और पलायन जैसी घटनाएं आम थी, जबकि अब प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच समिति गठित की। कानून

0: व्यवस्था के मोर्चे पर साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से 1.31 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने इसे जिले में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। वहीं फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला भी सामने आया। विभागीय जाँच में दस्तावेज फर्जी मिलने पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने सड़क सुरक्षा, साइबर सेवाओं और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन में पोलियो बूथ पर एक छोटे बच्चे को ड्रॉप्स पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 5,09,306 बच्चों को पोलियो की खुराक लाने का लक्ष्य रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार शक्ति दिखाई है। कार्य में लापरवाही मिलने पर नकुर थाने की अम्बेटा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा साइबर अपराध, वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और नियमित चेकिंग अभियान को तेज किया गया। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए। मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार ने मंडल स्तरीय बैठकों में विकास कार्यों, राजस्व मामलों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की।
1: अभी मंडली समीक्षा में हमने विकास कार्यों की जो कुछ कार्य हैं पर्यटन विभाग के वो इनकम्प्लीट हैं और यूपी सीएनडीएस इसमें कार्यदायी संस्था है तो उनको हमने पुलअप किया कि इसको समय पे पूर्ण किया जाए। और इसके अलावा अभी आने वाला जो मानसून सीजन है इसमें बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित अधिकारियों को।
0: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जल भराव, बाढ़ जैसी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बाइट मंडलायुक्त रूपेश कुमार। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के सर्वाधिक कर देने वाले 10 व्यापारियों और उद्यमियों को डीएम अरविंद चौहान व नगर विधायक राजीव उम्बर ने शील्ड, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। में लगभग पूरे महीना भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। कई बार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि इन दिनों मौसम विभाग ने सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं, गरज चमक और मानसून की आगमन की संभावना जताई। सामाजिक और खेल गतिविधियों में भी जिला सक्रिय रहा। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता अंडर 12 समर क्रिकेट लीग का फाइनल जिला साइकिलिंग संघ की कार्यकारिणी का विस्तार तथा CIS द्वारा अध्यक्ष रविन्द्र मिगलानी की अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर आयोजित सौहार्द कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहे। हरविंदर सिंह लाड की अध्यक्षता में यूपी सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई जिसमें गुरप्रीत सिंह बग्गा को नवाब कपूर सिंह सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें सिख समाज की एकजुटता, धार्मिक मर्यादा और युवाओं के लिए मुफ्त UPSC कोचिंग की घोषणा की गई। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ करते हुए शातिर आरोपी गणेशपुर निवासी रोहित उर बाबा को गिरफ्तार किया। थाना फतेहपुर पुलिस ने एक नदी के डूब क्षेत्र में कमरे में छापा मारकर मौके से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए।
2: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख है अजय श्रीवास्तव का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर के धनघटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संत कबीर नगर को 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बाबा तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर, मगहर के सुंदरीकरण और बखीरा झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, विधायक अंकुर राज तिवारी, विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जय केश त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुँचाया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेने पर विशेष जोर दिया। जनप्रतिनिधियों ने मेहंदावल धनघटा मार्ग को 4 लेन बनाने, जर्जर बिजली तारों को बदलने, नगरीय आवासों के निष्पक्ष आवंटन तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग उठाई। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि कार्यों में लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सभी निर्देशों का 100% पालन कराने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संत कबीर नगर में कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और जिलाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग प्रशिक्षक विवेक मिश्रा के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। संत कबीर नगर जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह, जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरकों, अस्पताल, भोजनालय और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कारागार में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश न हो, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कारागार परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। संत कबीर नगर की महुली थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने अशोक चौहान, शिव कुमार उर्फ नकुल चौहान और राजन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और पुलिस टीम पर हमला किया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गई। संत कबीर नगर के नाथनगर विकास क्षेत्र में पुत्सर में बिना मान्यता के संचालित स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय को सील कर दिया। ये कार्रवाई IGRS पर प्राप्त शिकायत और पूर्व में जारी नोटिस के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहा था, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वहां अध्ययनरत बच्चों का प्रवेश निकटवर्ती सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद से पल्स पोलियो जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की कि 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानुज कनौजिया ने बताया कि जिले में 311,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 858 बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं, जो अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगी।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com।
7: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
8: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
9: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित उर्दू प्रोग्राम।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, हमारे मेहमान के एक नए एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। सामिन, हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज के हमारे मेहमान में शिरकत करने वाली मशहूर शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा हैं। शबीना साहिबा, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना अदीब।
1: मोहतरमा, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके शेरी सफर का आगाज कैसे हुआ?
2: हमारे कानपुर का एक बड़ा तारीखी कस्बा मकनपुर है।
1: जी जी जी।
2: और उस सरजमीन में एक बहुत बड़ी अजीम बुजुर्ग की दरगाह है, सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार। उस कस्बे की ये खासियत है कि मैं समझती हूँ कि वहाँ का बच्चा बच्चा शायर है, शायरी वहाँ के पानी में है। और उस कस्बे से मिला हुआ एक छोटा सा गाँव है जिसको रौगांव कहते हैं, वहाँ से निकल कर आना मेरे लिए बहुत दुश्वार वाला सफर

0: था।
1: जी
0: तो हमारे यहाँ की मैं बात बताऊँ आपको कि शुरुआती जो मेरा दौर गुजरा है, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम तो यूं ख़वातीन की जो महफिल होती है मिलाद शरीफ, उसमें कभी कभी शिरकत करते थे। और उसके बाद एक जुलूस में मेरे मामूजान ने मुझसे कहा कि बेटा कुछ पढ़ोगी? तो मुझे पढ़ने का शौक तो शुरू से ही था, तो मैंने
1: जी
0: कहा मैं बिल्कुल पढ़ूंगी, अब माइक में तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कुछ पढ़िए, कुछ एक नात सुनाइए। जब मैंने नात शरीफ को पढ़ा और मेरी आवाज़ वहाँ के एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत उस कस्बे की मकनपुर शरीफ की अदीब मकनपुरी साहब,
1: जी जी
0: तो उन्होंने एक साहब को भेजा कि ये रात में जो इस बच्ची ने जो पढ़ रही थी वो कौन बच्ची है, कहाँ से उसका ताल्लुक है,
1: जी
0: उसको बुला कर लाओ।
1: जी
0: उन्होंने मुझे बुलाया और वो अपने घर लेकर गए, उस्ताद अदीब साहब से मिलवाया। तो अदीब साहब ने बड़ी मुझे दुआएं दी, बड़ी मेरी तारीफ की और फिर मुझसे कहा कि आप मेरा कलाम पढ़ेंगी? उस वक्त जाहिर सी बात है मेरी उम्र जो थी वो 8-9 साल की उम्र थी, और चूंकि पढ़ने का शौक था ही, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। तो वो शुरुआती दौर मेरा ऐसे ही गुजरा। फिर वहां की नशिस्तों में मैंने शिरकत की और धीरे धीरे ये सिलसिला जब आगे बढ़ा, तो मैं मदऊ तो नहीं थी उस मुशायरे में, एक मुशायरा हुआ उन्नाव में। उन्नाव में मुझे जब उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब लेकर गए, मैंने वहां पर जो कलाम पढ़ा, तो कैफी आजमी साहब मौजूद थे उस
1: जी
0: मुशायरे में।
1: अच्छा
0: तो कैफी साहब ने मुझे बेपनाह दुआएं दी, चूंकि मुशायरे की तो ये तहजीब नहीं है कि भाई पैसे दिए जाएं, तो उन्होंने मुझे बड़ी खामोशी से बुलाया और मुझे हाथ में चुपचाप पैसे दिए, और 100 का नोट था, और वो 100 का नोट मुझे आज तक मेरे पास
1: वो
0: चल रहा है,
1: देख।
0: उसी से मैं सफर कर रही हूँ।
1: मोहतरमा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी इब्तदाई तालीम या उसकी आखिरी मंजिल क्या और उसके बारे में
0: हाँ
1: बताएं।
0: बिल्कुल, हमारे कस्बे का फेयर कमेटी हायर सेकेंडरी स्कूल, वहां से मैंने हाई स्कूल किया, और उस दरमियान ये जरूर हुआ कि मुझे मुशायरे छोड़ने पड़े,
1: हाँ, जाहिर सी बात
0: लेकिन
1: है।
0: मुझे इतना शौक था और खानदान वालों की जो एक पाबंदियां थी को मैं बताऊं कि जब शुरुआती सफर हमारा वहां से शुरू होता था मकनपुर से, तो मैं इक्के से बैठकर किसी तरह से अरौल स्टेशन एक पड़ता है वहां आती थी, फिर वहां से बस या ट्रेन मिलती थी,
1: जी जी जी
0: तब जाकर हम उस मंजिल तक पहुंच पाते थे जिस मंजिल पे मेरा मुशायरा जहां पर होता था उस शहर में पहुंचना होता था
1: जी जी
0: मेरा।
1: जी
0: इस स्कूल से मुझे इतनी परमिशन थी कि मैं महीने 2 महीने में कभी शायद हम सफर कर लें मुशायरे के लिए, लेकिन उसमें भी हम खानदान वालों की भी डांट खाते थे और स्कूल की भी डांट खाते थे। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल
0: जो प्रिंसिपल साहब थे, उनके वालिद मोहतरम खुद एक बहुत बड़े शायर थे, चौधरी इतरत हुसैन साहब,
1: जी
0: तो अब वो हमारे अदीब मकनपुरी साहब के भी उस्ताद थे, तो वो मुझे ये परमिशन जरूर देते थे कि नहीं नहीं इस बच्ची का शौक जो है उसको मुझे नहीं मारना, इसको निकलने दीजिए घर से
1: बिल्कुल
0: बाहर, और इसमें तो अपने स्कूल का भी नाम होगा। लेकिन बहुत मुश्किल था फिर भी मेरे लिए सफर
1: जाहिर सी बात
0: करना।
1: है। मोहतरमा, आपके शेरी सफर की बात हो और उसमें एक गजल बिलखुसूस एक शेर उसका जिक्र ना आए, मेरे ख्याल से नामुमकिन होगा। आप समझ गए होंगी,
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: वो है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मोहतरमा, इस शेर को भी पढ़ें, इस गजल को भी पढ़ें और इसके पस मंजर पर जरूर रोशनी डालें जो हमारे सामने सुनना चाहते।
0: ठीक है, पहले मैं शेर ही सुनाती
1: जी जी
0: हूँ।
1: मैम।
0: खामोश

0: वाह वाह वाह,
1: खामोश लब हैं, और ये शेर
0: बिल्कुल
1: जिसका आप
0: जिसकी
1: इंतजार कर रहे हैं और
0: बिल्कुल
1: लोग
0: मेरे
1: भी
0: सारे
1: इंतजार करते
0: सामने
1: हैं।
0: इंतजार कर रहे हैं।
1: जो खानदानी रईस है वो
0: वाह
1: मिजाज रखते हैं नरम अपना,
0: वाह
1: जो खान

0: नहीं
1: नई
0: वाह
1: है,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: खामोश लब हैं। और इस गजल का मकता जो शायद आपने मालूम नहीं सुना
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: कि
0: मैं
1: नहीं सुना,
0: चाहे तो मैं
1: लेकिन
0: कहने ही वाला
1: मैं
0: था कि
1: पेश
0: आप
1: करना
0: नकता
1: चाहती
0: जरूर
1: हूँ
0: पढ़ें
1: जी
0: इसका।
1: बिल्कुल, कि अभी

0: आहा, क्या बात है, क्या खूबसूरत लगता है भाई। वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा एक चीज और, मैंने ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक मुशायरा दुबई का, शायद आपका मुशायरा था, जहाँ आपने इसके बाद वाला शेर पढ़ा था कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये
1: सारे आगे के
0: सारे लोग आगे की कुर्सी खाली करके, भैया हम नहीं है ऐसा, उसके बारे में
1: मैं एक वाकया और सुनाती हूँ। जब ये वीडियो क्लिप लोगों तक पहुंची तो एक उदयपुर का एक सिंघानिया परिवार है जिनको शायरी से कोई लेना देना नहीं, कोई शौक नहीं, और जब इस गजल को उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने बेटे की शादी में बाकायदा एक फंक्शन रखा और ये कहा कि भाई हमें शबीना अदीब को बुलाना है। तो एक भाटी साहब है वहाँ पर, गजल सिंगर है, जाहिर सी बात है मेरा नंबर तलाश करना है वो, तो किसी दराज से उन्होंने मेरा नंबर तलाश किया। फिर उन्होंने मुझे वाकया सुनाया, कहने लगे एक भाटी साहब है वो अपने बेटे की शादी में एक फंक्शन करना चाहते हैं जिसमें आपका सोलो एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं ऐसा करो, इसमें एक दो शोरा को और मधु कर लो तो एक अच्छी सी नशिस्त हो जाएगी, महफिल हो जाएगी शायरी की। जब मैंने ये शेर पढ़ा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा क्या के बैठे हो पहले सब में, अब जाहिर सी बात है उन्होंने एक मजाक भी किया थोड़ा अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई वो होता है ना शादी के माहौल में एक जो एक मजाक का जो एक, एक मतलब उस तरह का माहौल होता है, लोग इंजॉय करते हैं खुशी के माहौल में। तो वो जैसे ही मैंने वो शेर पढ़ा तो वो उन्होंने जैसे दुबई का जो क्लिप वायरल हुआ था रेहान सिद्दीकी साहब वाला, तो वो अंदाजे बयां और उनका एक वो वीडियो जो इतना वायरल हुआ कि वो लोग उसी तरह से नकल करने लगे बाकायदा। तो वो जितने आके एक सफ में लोग बैठे हुए थे वो सारे खड़े होकर जाकर पीछे बैठ गए और फिर बोले अब इसको पढ़ते रहिए, आगे के सोफे में कोई नजर नहीं आया। तो जब से ये गजल हमारी मकबूल हुई है तो मैंने ऐसे मनाजिर बहुत सी महफिलों में देखे।
0: ये जो आपने कहा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, इसका पस मंजर अभी आप बताना चाह रहे थे तो पस मंजर जरूर बताए आप।
1: हाँ देखिए अक्सर मतलब ऐसा देखा जाता है, हम अपने ही खानदान में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि अपने जब कोई चीज लाते हैं तो वो चीजों की मतलब बाकायदा उसके रेट भी बताने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसकी ये हैसियत नहीं है कि वो सोफा खरीद पाए, हालांकि ठीक है सब अपने मेहनत से वहां तक पहुंचते हैं लिहाज से, लेकिन मुझे लगता है कि शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: शबीना अदीब इस नाम से तो फेमस हो गई, लेकिन ये हकीकी नाम है या आपका तखल्लुस है, इसके बारे में जरूर बताएं।
1: हमारा तखल्लुस भी यही है और हकीकी नाम भी यही है। बचपन का नाम तो बस ऐसा ही था जो घर में साल दो साल तक लिया गया, उसके बाद नाम मेरा एक्चुअल में नाम यही है शबीना, और ये नाम भी मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब ने रखा।
0: आपकी शायरी की दुनिया फैन है, लेकिन आप खुद किस शायर को पसंद करते हैं, किसका कलाम आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता
1: है? हमारे तमाम असातिज़ा, तमाम मोहतरम शुरा, जैसे फिराक साहब भी हैं, बशीर बद साहब भी हैं, वसीम साहब भी हैं, और मुझे इस बात का फख्र हासिल है कि मैंने मजरू साहब के साथ भी मुशायरे पढ़े हैं, मैंने कैब भोपाली साहब के साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं, मैंने खुमार साहब और अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आजमी साहब ने तो मुझे खुद एक मुशायरे में मदऊ किया जब उन्होंने मुझे उन्नाव में सुना और मेरे उस्ताद से कहा कि भाई इस बच्ची को फेरिस्त मुकम्मल हो गई है, अदीब साहब तो मैं आपको तो नहीं मदऊ कर पाऊंगा लेकिन आप इस बच्ची को भेज दीजिएगा उस मुशायरे में। आजमगढ़ का मेरी जिंदगी का पहला वो बड़ा मुशायरा था आजमगढ़ का, और उस वक्त मैं शायरा वायरा क्या थी, बस ये है कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंची थी तो लोग एक इंतजार में थे कि एक बच्ची जिसको कैफी साहब ने खुद कहा है, तो एक इंतजार था लोगों को कि भाई एक मकनपुर से एक शायरा आई है, अब शायरा हो तो दिखाई दे, अब एक 9 साल की बच्ची वो दुबकी हुई बैठी हुई है डरी सी सहमी सी तो वो नजर कैसे आएगी। बहरहाल जब हमने वहां पढ़ना शुरू किया तो मेरी जिंदगी का वो एक मुशायरा ऐसा था कि उसने मुझे दुनिया के वो कोने कोने तक पहुंचा दिया। मेरी शादी जौहर कानपुरी साहब से हुई तो मुझे जो एक सपोर्ट मिला, मुझे लगता है कि मुझे अपनी खुशी से ज्यादा मैंने अपने शौहर को खुश देखा है, और शायद ये उनकी

0: क्या कैसा है, तो जौहर साहब क्या कहते हैं, नहीं, इसमें कुछ और कमी है, ऐसा कौन कीट
1: हाँ
0: कौन
1: नहीं,
0: कहता
1: ऐसा
0: है?
1: होता है कि जब हम शेर कहते हैं तो हम सबसे पहले, जाहिर सी बात है, आज तो मेरे उस्ताद भी वही हैं,
0: जी जी
1: तो सबसे पहले उन्हीं को सुनाते हैं, तो वो डांटते भी हैं, फिर हमसे कहते हैं यहाँ पर ये तुमने गलती की है, इसको सही करो, तो शायद ये उसी की देन है
0: कभी
1: जो
0: आपको
1: मुझे
0: भी
1: याद
0: ऐसा लगा
1: रहता
0: कि
1: है।
0: नहीं, आपका भी शेर ये अच्छा मुझे नहीं लग रहा, इसमें
1: हाँ तो मैं उनको भी टोक देती हूँ, उनको भी
0: कुछ
1: कहती हूँ कि नहीं इसमें तो आप,
0: हुक्मरानी तो होनी
1: मैं तो
0: चाहिए?
1: ये कहती हूँ कि आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी शायरी करते हैं, आप इससे अच्छा भी कह सकते हैं,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपने सही मशवरा दिया, तो वो मेरे मशवरे को भी
0: ये भी अच्छी बात है,
1: मानते
0: मशवरे में
1: हैं।
0: खैर है। मोहतरमा, शायरी के अलावा आपके
1: सिंगिंग
0: शौक और क्या क्या हैं?
1: का बहुत शौक है,
0: हाँ
1: इतना शौक है कि मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि जब
0: जी
1: मैंने 1986 में
0: जी जी
1: अपने ही शहर कानपुर का एक हिंदी का कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है, उसमें रामानंद सागर जी मुझे मिले, तो उन्होंने मेरे अब्बू से ये कहा कि भाई आप तो बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हैं, और ये शायरी वायरी छोड़िए, आप आ जाइए
0: जी
1: बॉम्बे, मैं आपका पूरा खर्चा, आपको रहने का, आपकी फैमिली को पूरा खर्चा दूंगा, और आप एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन सकती हैं, बहुत बड़ी फनकारा हैं
0: जी जी
1: आप
0: जी
1: खुद नहीं समझ पा रही हैं अपने आप को। तो हमने अनसुना सा घर वालों ने कर दिया, क्योंकि घर वालों को इतना अंदाजा ही नहीं था कि भाई इसको इतना शौक है कि ये शायरी की दुनिया में भी आगे निकल
0: बिल्कुल
1: जाएगी,
0: बिल्कुल।
1: तो उसके लिए मैंने ये वाला रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मुझे शौक था।
0: हाँ
1: और सिंगिंग का मुझे अभी तक बहुत शौक है, मुझे बहुत गाने के ऑफर हुए, अभी कुछ साल पहले भी आज जब मेरा बॉम्बे एक मुशायरे में जाना हुआ, तो एक कंपनी के एक साहब थे, शफी नियाजी साहब, जौहर साहब ने मेरी आवाज सुनवाई, सुन लीजिए एक शायरा है यहाँ आई है बॉम्बे के मुशायरे में,
0: जी
1: उन्होंने मुझे जैसे ही सुना तो उन्होंने बुला लिया कि आप स्टूडियो लेकर आ जाइए, मैं स्टूडियो में गई तो मैंने फौरन जैसे एक भजन सुनाया था, एक राधा एक मेरा,
0: जी
1: सोनू निगम की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो सोनू निगम साहब अपने स्टूडियो से बाहर निकल के आए, कहने लगे अरे ये आवाज, तो उन्होंने मुझसे कहा अरे आप ये लीजिए मेरा कार्ड, और आप तो बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं,
0: जी
1: आप क्यों नहीं इसमें ट्राई करती हैं, और शायरी भी
0: जी
1: करती
0: जी ये
1: रहिएगा
0: भी
1: और
0: फन
1: सिंगिंग भी
0: है।
1: करती रही। लेकिन हमें उसके लिए, क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली,
0: हाँ
1: लेकिन बाद में थोड़ा सा मैंने कोशिश की भी और मुझे कुछ गाने दिए गए, तो शफी नियाजी साहब, उनको एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था, वो जब लंदन गए और उसके बाद आए तो उनकी डेथ
0: जी
1: हो गई,
0: जी जी
1: तो जो गाने मुझे मिले थे उन गानों की भी डेथ हो गई मेरे साथ, और फिर वो
0: जाहिर
1: सिंगिंग की भी डेथ हो गई, ये समझ लीजिए, तो
0: जाहिर।
1: ऐसा हुआ मेरे साथ। तो बहरहाल सिंगिंग का बहुत
0: एक
1: शौक।
0: पुरानी कहावत है कि जब दिल टूटता है तब शायरी निकलती है, लेकिन आप
1: हाँ
0: इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं?
1: ये तो सच है कि हाँ दिल टूटता है तो शायरी निकलती है, अच्छे शेर होते हैं, लेकिन मेरा दिल वैसे अभी टूटा नहीं है, बगैर टूटे हुए मेरी शायरी हो गई, क्योंकि दुनिया के दिल जब टूटे, कुछ अपने इर्द गिर्द लोगों के दिल टूटे, जो उसको मैंने जब महसूस किया तो मैंने उसको पिरोया,
0: वो आपका
1: जरूरी नहीं कि
0: बहुत
1: वो खुद
0: कुछ।
1: की आपकी अपनी बात हो, क्योंकि
0: हाँ
1: शायर या
0: जाहिर सी बात
1: शायरा समाज का एक आईना है,
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: उस आईने में जब आप देखते हैं खुद को भी, तो वही लोग आपको नजर आते
0: तो हम ये
1: हैं।
0: जानना चाहेंगे कि अगर आप शायरा ना होती तो क्या होती?
1: मुझे लगता कि मैं हाउसवाइफ ही होती, क्योंकि जिस कस्बे से मेरा ताल्लुक था, जहां पर इतनी पाबंदियां हो कि 15-16 साल की बच्ची पर्दे में निकलती हो, बुरके में निकलती हो, जिस वक्त मेरी 9-10 साल की उम्र थी, उस वक्त जब लोगों ने इतना एहतजाज किया कि नहीं साहब हमारे यहाँ ये सब
0: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं है, हमारे यहाँ बच्चियां जो है वो ऐसे नहीं जाती हैं मुशायरे शायरे में, तो फिर मैं आपको मैं बताऊं शायरी की वजह से मुझे कानपुर शिफ्ट होना पड़ा, अपना गाँव
0: कस्बा छोड़ के, अपना
1: छोड़कर,
0: गांव
1: अपना
0: छोड़ के।
1: कस्बा छोड़कर मैं कानपुर शिफ्ट हुई,
0: जी
1: तो मुझे लगता है मैं हाउसवाइफ ही होती या फिर जॉब कर रही होती, क्योंकि मुझे उस दरमियान मुझे उर्दू टीचिंग की जॉब भी मिल रही
0: ये भी
1: थी,
0: बहुत अच्छी
1: और
0: बात है।
1: वो मैंने
0: कुछ
1: नहीं कर पाई
0: मुतबरिक
1: मसरूफियत के
0: अशार
1: बिना पर।
0: हमारे सामेन को
1: जी मैं चंद शेर एक गजल के पेश करती
0: जी
1: हूँ।
0: अता करें मत।

0: शुक्रिया कि अब किसी को
1: हमारे बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं,
0: किसी का भी बहुत शुक्रिया इंतजार नहीं। और ये शेर बतौर खास
1: जी अता करें मोहतरमा।
0: गजल में फूल नहीं देख के जख्म टाकूंगी।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात।
0: शेर देखें
1: जी जी,
0: गजल

0: बहुत
1: ये,
0: खूब।
1: और ये भी शेर बतौर खास,
0: इरशाद
1: करेंगे शोर ना पटकेंगे सर जमीनों
0: वाह, करेंगे शोर न पटकेंगे सर जमीनों पर।

0: सो भाई,
1: तुम्हारी
0: वाह
1: जीत तो है, ये हमारी हार नहीं।
0: मोहतरमा, आपने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया।
0: सामिन, ये थी हमारी मेहमान खसूसी मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जिनसे अभी आप लुत्फ अंदोज हो रहे थे। प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। सामिन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम खत्म।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोकगीत, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
3: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह को।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को।
1: नजर झुका कर खड़े हुए मेरे
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय

0: और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05 और 16 सेकंड हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का। श्रोताओं, सबसे पहली फरमाइश जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आया है तेरे नाम फिल्म से। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से इस गीत की फरमाइश की है नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने।

श्रोताओं, गाते गुनगुनाते कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश की है हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, रजा खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना, और इसी गीत की फरमाइश खैल बाजार पानीपत से की है नरेश मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा। आइए सुनते हैं मिलन फिल्म का ये गीत।

रे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ

मिलन फिल्म का गीत सुन रहे थे आप श्रोताओं। गाते गुनगुनाते कार्यक्रम में अगली फरमाइश जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आ रहा है आपकी कसम फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है। इस गीत की फरमाइश की है पद्मा टाकीज़ नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह ने, साथ ही मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह। और इस गीत की फरमाइश मध्य प्रदेश राजगढ़ से भी आई है, जिसकी फरमाइश की है गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पे आपकी कसम फिल्म का गीत।

0: लिए बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: श्रोताओं, गाते गुनगुनाते कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है सुरेवाड़ी छत्रपति संभाजीनगर से। प्रकाश बोर गांवकर, सुषमा भगवान कक्षवे, सौरभ कुमीर और धीरज गायकवाड़ की आप सभी ने फरमाइश की है संघर्ष फिल्म के गीत की मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मैं

पदमपुर जिला श्री गंगा नगर राजस्थान से अगली फरमाइश आई है मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा की। आप सभी ने फरमाइश की है गोलमाल फिल्म के इस गीत की, आइए सुनते हैं।

रहे थे ये गीत गोलमाल फिल्म से। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बेजुबान फिल्म से। इस गीत की फरमाइश आई है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू की।

बेजुबान फिल्म का गीत सुन रहे थे आप कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। अगला फरमाइशी गीत जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से, इस गीत की फरमाइश की है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पे जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का गीत।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। गाने गुनगुनाते कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गीत परवरिश फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की थी कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक ने। गाने गुनगुनाते कार्यक्रम में अगला गीत आ रहा है अभिषेक की फरमाइश पे भटहट गोरखपुर से। आइए सुनते हैं फना फिल्म का गीत।

शान और कैलाश खेर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फना फिल्म से। गाते गुनगुनाते कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ताजमहल फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिला छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार की।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से। इस गीत के साथ ही गाते गुनगुनाते कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, अगर आप भी अपने गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आकाशवाणी गोरखपुर के गाते गुनगुनाते पेज पर जाइए, अपना नाम लिखिए, फिल्म का नाम लिखिए, गीत के बोल लिखिए, आप कहाँ से संदेश भेज रहे हैं लिखिए और अपने फरमाइशी गीत हम तक पहुँचाइए।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की निस्वार्थ सेवा की सराहना कर रहे हैं। भारत वेनेजुएला में सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बैनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम

0: इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के टोरंटो में आज पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा। इससे पहले लॉस एंजलिस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news are read by Abhishek.
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग सुनेंगे। आज के कलाकार होंगे रामा ज्ञान यादव और उनके साथी।
3: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: जिंदगी बहुत कीमती है,
5: उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
7: टॉल कर ही नहीं,
8: किनकर भी मिलता है,
9: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
10: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
11: और भरोसा।
12: जानो फिर मानो।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
13: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
14: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
13: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
14: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
13: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
14: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
13: For details, log on to www.ddindia.com।
2: और अब आइए सुनते हैं लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में रामाज्ञान यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में अभी आप रामा ज्ञान यादव और साथियों के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये लोकगीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में रामाज्ञान यादव से भी आप लोकगीत सुन रहे थे और अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: और आइए सुनते हैं लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में रामाज्ञान यादव को।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, B-Pharma, M-Pharma और D-Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: अभी आप लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग सुन रहे थे। आज के कलाकार थे रामा ज्ञान ज्ञातो और साथी। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।

परदेसी गर्ल अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि में ये गीत। और आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत। बोल हैं कहो ना प्यार है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत, और हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH service DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV channels और radio channels।

0: की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: और आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि में फिल्म कल हो ना हो फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कल हो ना हो फिल्म का ये गीत। आवाजें थी अलका याग्निक और शान के। संगीत दिया था शंकर एहसान लॉयर ने और गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। और आइए सुनते हैं लगान फिल्म का ये गीत।

अभी आप जावेद अख्तर के लिखे हुए गीत को लगान फिल्म में सुन रहे थे, एआर रहमान के संगीत निर्देशन में। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में ये गीत।

अभी आप फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं और आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
2: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
3: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
2: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
4: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
5: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
6: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
7: हाँ, 2000 साल पहले।
8: नानी माँ?
9: हाँ निधि।
8: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
9: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
8: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
9: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
8: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
9: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
8: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
9: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।

0: नाना नानी के शादी के कपड़े, भाई वाह। नानी, पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
1: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
2: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
1: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
0: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
1: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है, है ना?
0: मामा जी, मामा जी।
3: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
2: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
3: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
3: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
3: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
3: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
3: हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा।
3: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा।
3: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
3: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
3: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
3: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
3: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
3: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी

0: नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ दीका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती, शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी

0: दुर्गावती।
1: अहा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा, वाह। अरे
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दल प्रचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी।

0: रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत

0: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
1: अच्छा तो गनू बेटा, ला, तू अपनी कटार मुझे दे।
0: रानी माँ, मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
2: आशुताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे।
6: कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: और आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने सुहाने। कहते हैं सपने सभी के होते हैं, सपने जिंदगी में एक राज की तरह होते हैं। सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं जब उन्हें खुली आंखों से देखा जाए, और कभी ये सच ऐसे सपने होते हैं कि जैसे लगता है कि हर वक्त ये सच ही हैं लेकिन होते नहीं। लेकिन मन हमेशा यही कहता है कि ये सपने काश सच होते और ऐसे सपने हर दिन आते हैं।

अभी आप लता मंगेशकर की आवाज में आदमी फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। कहते हैं तपती गर्मी और धूप के बाद बादलों ने कुछ बूंदाबांदी की और मौसम को आशिकी हो जाती है। कहते हैं जब मौसम खुशनुमा हो जाता है, मौसम को प्रसन्न देखकर सभी नदियाँ, झील, झरने, चिड़ियाँ, पशु पक्षी सब चहकने लगते हैं, जैसे मानो प्रकृति कोई मधुर संगीत गा रही हो। प्रकृति और मौसम की आशिकी को देखकर गीतकार ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकृति की ये छटा बयां की है। वहीं लता जी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ को इस तरह प्रकृति को खुशनुमा बना दिया है पाकिज़ा फिल्म में।

0: पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: डीडी डायरेक्ट प्लस
2: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
3: और आइए सुनते हैं गाने सुहाने कार्यक्रम को फिर से एक बार।

अभी आप हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। आवाज़ें थी कविता कृष्णमूर्ति और केके की। कहते हैं तपती धूप और गर्मी से निजात पाने के लिए सभी चाहते हैं कि पानी की बूंदें बरसें, पानी के किनारे कुछ राहत मिले। जब पानी बरसता है तो सभी को एक आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद की प्राप्ति कभी कभी लहरों के किनारे जाने से भी होती है। ये लहरें के किनारे, सागर के किनारे जाने से पूरी हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं सागर के किनारे।

0: अभी आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में सागर फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गाते गाने सुहाने समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
5: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
6: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
5: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
6: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
5: गाने के बोल,
6: गीतकार
5: और संगीतकार,
6: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
5: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
6: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
5: गाते
6: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
5: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें।

0: अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में जगजीत सिंह की गाई गजल सुन रहे थे और हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
3: और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: सकता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जदीद इंतज़ामी तरबियत के लिए 464 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 22 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर बनाए गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एकेडमी के जदीद तरीन नए कैंपस का अफ्तिताह किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने नवें उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2026 का अफ्तिताह किया और उसका सोवेनियर जारी किया। इसके अलावा उन्होंने तरक्की पसंद बागबानों को एजाज से भी नवाजा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के महकमे के काम का जायजा लिया। उन्होंने शेल्टर होम्स और ट्रेनिंग सेंटर और हाफ वे होम्स में रहने वालों की देखभाल के लिए ग्रांट की रकम 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए माहाना करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट।
2: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
1: देही तरक्की, ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 का आगाज़ किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यह एक्ट मुल्क में रोज़गार को यकीनी बनाने, देही माश को मजबूत करने और देहात की तरक्की को तेज़ करने की सिमत में एक अहम कदम है। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में एक्ट के आगाज़ के लिए मुनक्किद प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मजदूरों को इज्जत देने, गरीबों की मदद करने और देही हिंदुस्तान में देहातों की पायदार तरक्की को तेज़ करने का एक ताकतवर जरिया बनेगी। SIT की टीम श्रीराम मंदिर चंदे के गबन के इल्ज़ाम की जाँच के सिलसिले में कल एक बार फिर अयोध्या पहुँची। टीम अपनी तहकीकात जारी रखते हुए मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र से तहकीकात कर रही है। तफ्तीश की मुद्दत 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दरियासना अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने श्रीराम मंदिर चंदे के गबन केस के एक मुलजिम लव कुश मिश्रा से जुड़ी एक जेर तामीर जायदाद को नोटिस जारी किया है। सेक्रेटरी ADA ने बताया कि नोटिस बिल्डिंग रेगुलेशंस की मुश्तबे खिलाफ वर्जियों की वजह से जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ADA की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज लखनऊ के मुख्तलिफ मराकज़ पर दूसरे दिन भी मुनक्किद हो रहा है। कल 4 जुलाई तक होने वाले इम्तिहान के लिए रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों और दूसरी रियासतों से भी लोग लखनऊ आए हैं। इंतज़ामिया ने इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इंतज़ाम किए हैं। बायोमेट्रिक के बगैर किसी उम्मीदवार को सेंटर में दाखिल नहीं किया जा रहा है। सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 29 जून से लागू हो गई है। नई स्कीम ने 1952 की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम की जगह ली है। इस स्कीम का मकसद डिजिटल तामील को मजबूत करना, इंतजामी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, अकाउंट की मुंतकली को आसान बनाना और लेबर प्रोविडेंट फंड के नए ढांचे के साथ हम आहंग करना है। नई स्कीम के तहत लाजमी EPF का हिस्सा मुलाजिम और आजिर दोनों के लिए तनख्वाह के 12% पर रहेगा। 10% की मौजूदा शरह मरकजी हुकूमत के जरिए मुतला करदा इदारों पर लागू रहेगी। स्कीम में जुजवी रकम निकालने के कवानीन को भी अपडेट

0: کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے اگلے 3 دن تک ریاست کے مشرقی اور مغربی ڈویژنوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دریاسنا ریاست میں مانسون کی آمد سے لوگوں کو شدید گرمی سے راحت ملی ہے، حالانکہ کئی اضلاع میں لوگوں کو اب بھی نمی کا سامنا ہے۔ جنوب مغربی مانسون منگل سے سرکاری طور پر اتر پردیش میں داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए उनका कार्यक्रम नारी जगत।
2: नारी जगत सुनने वाली सभी बहनों को रंजना का नमस्कार। बहनों, अपना देश तीज त्योहारों और अपनी संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, जहाँ प्रकृति से जुड़े हर एक चीज़ को महत्व दिया जाता है, चाहे वो नदी हो, पेड़ पौधे या पशु पक्षी, यानी सभी उत्सव इनके साथ हैं। पूरी प्रकृति है, या यूं कहें कि इस प्रकृति से ही हमारे सभी उत्सव हैं। चाहे अपने यहाँ बरगद, तुलसी, केले और पीपल को पूजने की प्रथा हो, या शुभ कार्यों में आम और अशोक के पल्लों से घर का मुख्य द्वार सजाने की परंपरा, ये सभी प्रतीक हैं हमारे और प्रकृति के जुड़ाव के, ये इन्हें संजो कर रखने के। और बहनों, इसीलिए तो हम सभी मानसून की शुरुआत में मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, क्योंकि बहनों ये समय होता है अधिक से अधिक हरियाली लाने का, यानी अधिक से अधिक वृक्षारोपण का। मैंने पेड़ को पूरे पर्यावरण का फेफड़ा कहा जाता है, जो कि हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तो चलिए बहनों, हम भी दिल से जुड़ते हैं प्रकृति से और लगाते हैं कुछ पौधे सुकून के, क्योंकि तभी हम जीवन और आत्मा के उस हिस्से को जान पाएंगे जहाँ शांति हो। तभी तो शहरों से निकल कर हम पहाड़ों पर जाते हैं, देखने सिर्फ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़। मैनू आपने भी वहाँ महसूस किया होगा सेहत और शांति का एक अटूट स्रोत, सचमुच बहनों, जिसका भी जुड़ाव प्रकृति और पेड़ पौधों से हो जाता है ना, उन्हें ये बाहर का संगीत नहीं भाता, उन्हें तो बस भोर में चहचहाती चिड़ियों की धुन, पेड़ पौधों के बीच गुजरती महकती उन हवाओं का संगीत मन को सुकून देता है, और वो बस इसी को तलाशते हैं अपनी बगिया में और सपने सजोते हैं फूलों के शहर का।

मैनू इस गीत के बाद चलिए बातें करते हैं हरियाली से ही जुड़े मिशन लाइफ और नगर हरित अभियान की, जो कि शहरों में हरियाली बढ़ाने और बड़ी बड़ी इमारतों के बीच शुद्ध हवा के लिए प्राकृतिक वातावरण बनाने पर जोर देता है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और तापमान भी नियंत्रित हो। इसीलिए तो बहनों बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए स्कूलों में इको क्लब बनाए जा रहे हैं। बहनों मिशन लाइफ और नगर हरित अभियान सरकार की दो ऐसी पहल हैं जिसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना और शहरों में हरियाली बढ़ाना है। दोनों का लक्ष्य आम जनता को जोड़कर जलवायु परिवर्तन से लड़ना है। तो चलिए बहनों हम भी जुड़ें इस अभियान में और लगाएं एक पौधा धरती के नाम। हमारी सबसे अनमोल भेंट है ये। जब हरियाली बढ़ेगी तब पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो आइए पौधा लगाने तक ही ना रहें बल्कि इसको बढ़ाने में भी हम आगे आए। तो आइए बहनों वृक्ष बनने तक हम इन्हें संरक्षित करें, इनके संकल्प लें। एक पौधा आज हरियाली कल, यही है प्रकृति के प्रति हमारा सच्चा संबल।

बहनों, कहते हैं हर दिन खास होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ त्यौहार हो, उत्सव हो, बल्कि हम चाहें तो छोटी छोटी खुशियों में भी इसे हम इसे यादगार बना सकते हैं। तो बहनों, इस वन महोत्सव में भी चलिए हम भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कुछ नहीं तो एक गमले में एक पौधा तो लगा ही सकते हैं, और अगर पहले से ही पौधे हैं तो एक मिनी गार्डन तैयार कर सकते हैं, अपनी बालकनी और छत को हरा भरा बना सकते हैं। तो चलिए आज अपने गार्डन के खास कुछ पौधों की कटिंग अपने साथियों में बांट लें, क्यों?

है ना एक शानदार पहल। मैंने अपने जो हमारे मिनी गार्डन है ना, हम धनिया उसमें तुलसी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पुदीना, हरी मिर्च जैसी ज़रूरी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से मौसम में मिलने वाले फूलों से अपनी बगिया महका सकते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जैसे स्नेक प्लांट, मनी प्लांट। अगर इन्हें अपनी बालकनी में रखा जाए ना, तो ये सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्हें भी आप अपनी बालकनी में लगा सकती हैं। अगर आपकी बालकनी में कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप आ रही हो ना, तो आप अच्छे से मिनी गार्डन तैयार कर सकती हैं। और बहनों, अगर बालकनी या छत के फर्श पर जगह कम है, तो दीवारों पर ग्रिल या हैंगिंग बास्केट का उपयोग करके वर्टिकल गार्डन आप बना सकती हैं। और बहनों, गार्डनिंग करते समय सही पॉट और मिट्टी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। भारी मिट्टी के गमलों के बजाय हल्के आयताकार गमलों या ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करिए। हल्की मिट्टी के लिए मिट्टी में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर गमलों में भरिए, ताकि गमलों का वजन ना बढ़े। मैंने अक्सर हम लोग पुराने टिन और बाल्टी डब्बों का प्रयोग करते हैं पौधे लगाने के लिए, तो उसमें भी ध्यान दीजिए कि ड्रेनेज होल हो, ताकि पानी निकासी होती रहे। मैंने पौधों को लगाने के लिए हमेशा कम से कम 8 इंच से गहरा गमला चुनिए, ताकि जड़ों को फैलने की जगह मिल सके। और बहनों, आजकल तो कपड़े के ग्रो बैग्स भी मार्केट में खूब मिल रहे हैं, जो कि हल्के भी होते हैं और हवादार भी। इसके साथ ही बहनों, गार्डन के पौधों को नियमित पानी देना भी ज़रूरी होता है, ख़ास करके भाई इस गर्मी में तो सुबह और शाम दोनों ही समय पौधों को पानी ज़रूरी हो जाता है। पर बहनों, कुछ पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्यान रखें ताकि ओवर वाटरिंग ना हो। तो भाई, इस तरह से आपकी बगिया होगी हरी भरी, उसमें चहकेंगी चिड़िया, बैठेंगी तितलियां और गुनगुनाएंगे भौरे। तो बहनों, सुबह उठकर अपनी बगिया में जाकर तो देखिए, खिले हुए फूलों को देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगी।

मैनू हम सबका ना ज़्यादातर समय जो है इसी सोच में बीतता है कि हम किचन में कल क्या बनाएंगे, आज रात में क्या बनाएंगे। और भी किचन के बहुत सारे काम होते हैं, बिनना होता है हमें अनाजों को, और भाई बरसात है तो इसमें सुखाना भी पड़ता है। तो इस तरह से हम ज़्यादातर जो समय होता है ना हम किचन में बिताते हैं और किचन की बातों से जुड़े विचारों में बिताते हैं। तो भाई बहनों, ऐसा भी होता है ना कि हम जब खाना बनाने चलते हैं तो दाल बिनना, दाल को धोना, ये सब तैयारी हम पहले करते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को हम जब कर रहे हों, तो दाल जब भी हमने धुला तो उसके जो पानी हमने निकाला है तो उसको भी हम इकट्ठा करके रखें और इन सब चीज़ों को हम अपने गार्डन में यूज़ करें। इसी तरह से चावल के पानी को भी हम यूज़ कर सकते हैं और सब्जियों को जो धो करके हम पानी निकालते हैं ना उसे भी हम स्टोर करके रखें। ये बहुत ही अच्छे जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में हम इसे फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बहनों, जो हमारे किचन में जो गीले कचरे निकलते हैं इसे भी हम प्रोसेस करके खाद बना सकते हैं। और बहनों, ख़ास करके जो प्याज के छिलके होते हैं और हमारे घर में जब चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है, इन सबको हम एक बड़े से बाल्टी में डाल करके और उसके 4 गुना मात्रा में हम उसमें पानी मिला करके अगर हम रख दें 4 से 5 दिनों के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है। और हम इसे फिर छान करके रख लें और एक एक मग हम सभी गमलों में डालें तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसी तरह से बहनों, जब हम इस चीज़ का भी ध्यान रखें ना कि हम जब रसोई में हैं तो हम इको फ्रेंडली रहें। और सबसे ज़रूरी है बहनों कि हम इससे जुड़ने के लिए हम जब भी मार्केट जाते हैं ना सब्जी और किराना का सामान लाने के लिए, तो हमेशा घर से सूती या जूट का बैग थैला लेकर जाएं। और इसी तरह से जो हम फ्रिज में रखते हैं अदरक, नींबू, मिर्ची, ये सारी चीज़ें जो हैं हम मलमल के पाउच में स्टोर करके रखें। और प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी ना करें, हमेशा ही कॉटन वी बैग वैक्स जो रैप आते हैं ना, सूती गीले कपड़े का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अब आते हैं साफ़ सफाई की चीज़ों पर, जहाँ बर्तन

बनाने के लिए प्लास्टिक वाले स्क्रैपर्स यूज़ करते हैं, तो इसकी जगह भी हम नारियल के रेशे या लकड़ी के ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। लिक्विड सोप में हम केमिकल वाले लिक्विड की जगह नींबू सिरका और रीठा जैसे प्राकृतिक क्लीनर्स को अपना सकते हैं। किचन में पानी रखने के लिए पीने के लिए तांबे या मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहनों, इस तरह से हम इको फ्रेंडली रह करके अपने पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। और बहनों, जब हम अपने किचन गार्डन में रहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, उन सब को हम किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जो हमारे गार्डन में जब कीड़े लगते हैं, तो वहाँ पे हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को जहाँ जहाँ पे सफ़ेद जो फफूंदी लग जाए या जो कीड़े लगते हैं, उस पर हम छिड़क सकते हैं। लाल मिर्ची पाउडर को डाल सकते हैं। इस तरह से जो पौधे होंगे वो शुद्ध होते जाएंगे और कीड़े हटते जाएंगे। और बहनों, जब आपने भी नोटिस किया होगा ना, जब हम अपने किचन गार्डन में होते हैं और जब हम अपने से लगाए हुए पौधों को बढ़ते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पत्ता पत्ता, बूटा बूटा हमसे कुछ कह रहे हों।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत। आज नारी जगत प्रस्तुत कर रही थी रंजना मिश्रा। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202-4075 या 2288-6016 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com।
7: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
8: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
4: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
8: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
4: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
8: गाने के बोल,
4: गीतकार
8: और संगीतकार
4: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
8: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
4: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
8: गाते गुनगुनाते
4: सुनिए सुबह 10:05 पर।
8: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी। खेती किसानी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दुधारू पशुओं में बाजपन की समस्या विषय पर डॉक्टर सुमिता त्रिपाठी से उनकी वार्ता।
1: से पाया गया है कि जैसे जैसे दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है, वैसे ही उनकी प्रजनन क्षमता में गिरावट हुई है। दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रजनन क्षमता पर निर्भर करती है। अक्सर हमारे पशुपालकों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनके दुधारू पशुओं में मां बनने की क्षमता है भी या नहीं, जिसके कारण उनके काफी आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ता है। हालांकि बाजपन एक बड़ी परेशानी है, लेकिन अगर हमारे पशुपालक भाई अलर्ट हो जाएं, तो गाय भैंसों के बाजपन को दूर किया जा सकता है और दूध उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। पशुओं में अस्थायी रूप से प्रजनन क्षमता घटने की स्थिति को ही बाजपन कहते हैं। बाजपन की स्थिति में दुधारू गाय अपने सामान्य ब्यात अंतराल को कायम नहीं कर पाती, जो कि 45 से 60 दिन का होता है। ब्यात अंतराल को कायम रखने के लिए पशु ब्याने के बाद 45 से 60 दिन के अंदर हीट में आना चाहिए और 100 दिन के अंदर गाय गाभिन हो जानी चाहिए। दुधारू पशुओं में बाजपन दो तरह का हो सकता है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी बाजपन जो है तीन तरह से हो सकता है, जैसे मादा पशुओं में जनन अंगों में अंडाशयों का अनुपस्थित होना या अंडाशयों का विकसित ना होना, और एक फ्री मार्टिन कंडीशन होती है जिसमें एक नर और एक मादा जुड़वा बच्चे जब होते हैं तो मादा जो होती है वो अक्सर बांझ होती है। इन तीनों ही व्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न बांझपन स्थायी होता है और इसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए ऐसे पशुओं को अपने समूह से छांट के अलग कर देना चाहिए। दूसरा होता है अस्थायी बांझपन, और ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के हो सकते हैं, कार्यात्मक, संक्रामक या प्रबंधन से संबंधित। अब कार्यात्मक बाजपन जो होता है वो अप्रत्यक्ष मद या फिर साइलेंट हीट, मौन मद, इन कंडीशंस में जो पशुपालक होते हैं वो स्ट्रेस साइकिल तो पशु की नॉर्मल होती है, लेकिन पशुपालक जो है हीट के साइंस को पहचान नहीं पाते, जिससे उनका सही समय पे एआई नहीं हो पाती है और पशु जो है गाभिन नहीं हो पाते हैं। फिर एक होता है ट्रू एनिस्ट्रेस, मतलब उसमें पशु जो है हीट में आते ही नहीं है, और डिलेड ओव्यूलेशन होता है, मतलब अंडाशयों से अंडा जो है सही समय पर अगर नहीं निकलता है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण पशु गाभिन नहीं हो पाते हैं। और अंतिम जो होता है सिस्टिक ओवरी होती है, मतलब अंडाणु जो है उसपे सिस्ट बन जाता है, या परसिस्टेंट कॉर्पस लूटियम होता है, जैसे जो गाभिन पशु होते हैं जब बच्चा दे देते हैं तो कॉर्पस लूटियम टूट जाता है, जब वो नहीं टूटता है उसकी वजह से भी पशु हीट में नहीं आते और गाभिन नहीं हो पाते। फिर दूसरा होता है संक्रामक बाजपन। अब संक्रामक में भी अनिर्दिष्ट होते हैं और कुछ विशिष्ट होते हैं। तो अनिर्दिष्ट में जैसे सूजन आ जाती ओवरी में, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस में, या सर्विक्स में, वजाइना में, ये इनके मेन जो रीजन होता है वो सब कारण एक जैसे ही होते हैं, या तो जैसे गर्भपात हो जाए, या अकाल प्रसव, मृत जन्म होता है, कठिन प्रसव हो जाता है, डिस्टोकिया जिसको हम कहते हैं, या जेर सही समय पे नहीं गिरती है जिसके वजह से पशु में संक्रमण हो जाता है। ये मेनली जो है जब साफ सुथरी जगह पे प्रसव नहीं हो पाता है या सफाई का ध्यान नहीं रखने की वजह से होता है। और इन सारी परिस्थितियों के निवारण के लिए गाभिन पशुओं का पोषण बेहतर तरीके से होना चाहिए, गाभिन पशु का प्रसव साफ सुथरी जगह पर होना चाहिए, जेर सही समय पे गिरनी चाहिए उसकी, और अगर कठिन प्रसव जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। प्रसव के बाद जेर गिरने का जो है 8 से 12 घंटे तक इंतजार करना चाहिए, और पशुओं में एआई करते समय हमेशा कीटाणु रहित उपकरणों का ही उपयोग होना चाहिए, और एआई करने से पहले ये भी कंफर्म कर लेना चाहिए कि पशु पहले से गाभिन ना हो। फिर दूसरा जो विशिष्ट संक्रमण होता है ये रोगाणुओं के द्वारा होता है, और ये पूरे समूह को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसके कारण पूरे समूह की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है। ये तीन मेन इसके वो होते हैं।

0: ट्राइकोमोनियासिस होता है, ये जो ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ से होता है, और ये गायों में बांझपन उत्पन्न करता है। गाभिन गायों में पहले तिमाही में इसमें गर्भपात हो जाता है। पायोमेट्रा जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। इसके रोकथाम के लिए जो संक्रमित गाय होती है उसको समूह से अलग कर देना चाहिए और 5-6 हीट तक उसको प्रजनन नहीं कराना चाहिए। गायों में जो है सांड की बजाय एआई से प्रजनन कराने को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर दूसरा है विब्रियोसिस, ये कैंपाइलोबैक्टर फीटस नामक बैक्टीरिया से होती है, और ये भी संक्रमित सांड या एआई के दौरान बैक्टीरिया से संक्रमित वीर के प्रयोग से होती है। इस रोग में एंडोमेट्राइटिस जो अंतः गर्भाशय जो होता है उसमें सूजन आ जाती है, प्रारंभिक भ्रूण मृत्यु हो जाती है, और गाभिन गाय जो होती है उसकी दूसरी तिमाही में गर्भपात होता है। संक्रमित गाय में जो अंतः गर्भाशय में सूजन की वजह से वो गाय गाभिन नहीं हो पाती है और रिपीट ब्रीडर जैसे लक्षण दिखाती है, मतलब बार बार उसको एआई करने पे भी कंसीव नहीं करती है। विब्रियोसिस के निवारण के लिए गायों में सांड के बजाय कृत्रिम गर्भाधान की विधि से प्रजनन को कराना चाहिए। फिर तीसरा ब्रुसेलोसिस होती है, ये बीमारी ब्रुसेला एबॉर्टस बैक्टीरिया से होती है और गाभिन गाय के तीसरे तिमाही में गर्भपात का कारण होती है। यह बैक्टीरिया जो है मुख्य रूप से संक्रमित आहार और पानी से संचारित होता है, जिसके अलावा संक्रमित वीर्य से एआई करने पे भी ये संचारित हो सकता है। गाय में इस बैक्टीरिया का एक बार संक्रमण होने पर वो जीवन भर जो है संक्रमित रहती है और पूरे समूह को संक्रमित कर सकती है। इस रोग का गायों में मतलब ग्रसित गायों में कोई उपाय नहीं है, इसलिए ऐसी गायों को समूह से अलग कर देना चाहिए। किसी भी समूह में अगर किसी गाय का समय से पूर्व गर्भपात हो जाता है तो उसको समूह से अलग करके उसके बाद उस जगह को कीटाणु रहित करना चाहिए। और इस बीमारी से बचाव के लिए छोटी बच्चियां जो होती है 3 से 7 महीने की, उनमें ये वैक्सीन भी लगाया जाता है। सबसे मुख्य जो हमारे पशुपालकों को ध्यान देने के लिए जो ध्यान देना चाहिए वो होता है प्रबंधन से संबंधित बांझपन, और प्रबंधन से संबंधित बांझपन का ये मुख्य कारण है, और इसके अंतर्गत पोषण, पशु में मद की स्थिति की पहचान और तनाव संबंधित जो होता है ये शामिल है। तो पोषण संबंधित जो है, पोषण संबंधित में पशु को बैलेंस डाइट देना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन, मिनरल, ये सारे बैलेंस्ड पोषण में होना चाहिए। किसी भी चीज की अधिकता या न्यूनता होने पे वो प्रजनन को प्रभावित करती है। विभिन्न विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और मिनरल्स जैसे फास्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम, ये जो है मुख्य रूप से प्रजनन को प्रभावित करते हैं। इसलिए पशु के राशन में ये सारी चीजें सही अनुपात में होनी चाहिए और पशुओं को प्रतिदिन जो है 50 ग्राम खनिज मिश्रण चारे में मिलाकर देना चाहिए। अभी दूसरा होता है पशु में मद की स्थिति की पहचान, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और पशु को मद की स्थिति में सही समय पर नहीं पहचानने से एआई जो है सही समय पर नहीं हो पाती, जिसके कारण पशु गाभिन नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी पशु हीट में है उसको कम से कम दिन में 3 बार हीट के लक्षणों के लिए पहचान करनी चाहिए और सही समय पर एआई करवानी चाहिए। तीसरा तनाव संबंधित है, तनाव संबंधित जो है अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड, पेट में कीड़े या चीचड़, ये सब पशु की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसलिए पशु को अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी से बचाना चाहिए। परजीवी समस्या के निवारण के लिए पशुओं को हर 3 से 4 महीने में कृमिनाशक दवाएं देनी चाहिए। फिर दुधारू पशु जो होते हैं इनमें बांझपन की समस्या जो होने से पशुपालक को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पशुपालकों को इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक उन्नति हो और उनके फार्म का भी विकास हो।
1: दुधारू पशु में बांझपन की समस्या विषय पर अभी आप डॉक्टर सुमिता त्रिपाठी से उनकी वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा

सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह काराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारी

0: इंडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से नेपाली कार्यक्रम सुनेंगे।

0: फिल्म संगीतको प्रसारणपछि अब सुन्नुहोस् समाचार।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, दिव्यतम अधिकारीबाट समाचार सुन्नुहोस्।

0: यतिन्जेल प्रस्तुत थियो विविध वार्ताको कार्यक्रम रवा सुनो समाचार।
1: यो आकाशवाणी हो, अब अजित विश्वबाट सुन्नुहोस् समाचार। सुरुमा प्रमुख समाचार।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बज रहे हैं। संपन्न होती है आज की ये प्रसारण सभा। शाम 5 बजे अपने सायंकालीन प्रसारण सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी ना मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदि थी, वो इसे जानती थी। वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन

कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल, अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहां पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती है। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है,
इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता

खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहां मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है।

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार

सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा,

हाँ, थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता, तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। कैसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा हर औरत एक बुत ही तो है, महज मुस्कुराती हुई। क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है? चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरजते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने

ने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा। वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी प्रकृति ही प्रेम

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी।

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी। पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था। उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था। ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है? सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका? प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ? आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी वहीं से।

ते जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमनी सी उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान

संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता, उसमें सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आई जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया

कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी।

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना स्थायी रूप से बंद करना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से

0: बड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
5: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
6: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
5: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
6: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
5: गाने के बोल,
6: गीतकार
5: और संगीतकार,
6: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
5: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
6: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
5: गाते
6: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
5: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
7: नमस्कार, आदाब, स्वागत है।

आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए और कभी भी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन का मतलब होता है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कचरे का उचित संग्रहण, छटाई, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान करना। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण आज हमारे सामने कचरे का ढेर एक विकराल समस्या बन चुका है। इस समस्या का एकमात्र समाधान सही और टिकाऊ कचरा प्रबंधन है। मानव अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान कई ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता है जो इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाती हैं। इन्हीं अनुपयोगी वस्तुओं को हम कचरा या अपशिष्ट कहते हैं। जब हम इस कचरे को बिना सोचे समझे कहीं भी फेंक देते हैं तो ये प्रदूषण और बीमारियों का कारण बनता है। कचरा प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिसके तहत कचरे को उत्पन्न होने से लेकर उसके अंतिम निपटान तक सही तरीके से संभाला जाता है। प्रभावी प्रबंधन के लिए कचरे को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, गीला कचरा या जैविक अपशिष्ट। इसमें रसोई का कचरा जैसे फलों, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन और बगीचे की पत्तियां वगैरह शामिल होते हैं। ये कचरा बायोडिग्रेडेबल होता है। और दूसरा होता है सूखा कचरा यानी अजैविक अपशिष्ट। इसमें प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़े और ई वेस्ट शामिल होते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं हो सकते। कचरे की समस्या को कम करने के लिए दुनिया भर में 3R का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस के तहत हमें ऐसी वस्तुओं का उपयोग कम करना चाहिए जो कचरा बढ़ाती हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक्स। किसी वस्तु को फेंकने के बजाय उसे दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके खोजने चाहिए, जैसे पुरानी बोतलों या डिब्बों का उपयोग आप पौधे लगाने के लिए कर सकते हैं। रिसाइकल में सूखे कचरे जैसे कागज, प्लास्टिक और धातु को फैक्ट्रियों में भेजकर उनसे नई चीज़ें बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा गीले कचरे से कंपोस्टिंग यानी खाद बनाने की तकनीक द्वारा बेहतरीन जैविक खाद तैयार की जा सकती है जो खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। दोस्तों, कचरे का सही ढंग से निस्तारण करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे पर्यावरण का संरक्षण होता है, हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित होने से बचते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आता है, डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा कम होता है। आधुनिक तकनीकों से कचरे को जलाकर या बायोगैस के जरिए बिजली और ऊर्जा भी बनाई जा सकती है। रिसाइकलिंग उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। दोस्तों, कचरा मुक्त समाज का निर्माण केवल सरकार या नगर पालिकाओं के भरोसे संभव नहीं है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन तभी पूरी तरह सफल होगा जब देश का हर नागरिक इसमें अपना योगदान देगा। हमें अपने घरों से ही शुरुआत करनी होगी। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखें और प्लास्टिक का उपयोग बंद करें या फिर कम से कम करें। हमारा एक छोटा सा कदम हमारी धरती को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बना सकता है।

दोस्तों, वनों की रक्षा करना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। वन हमारे जीवन का आधार हैं और इनके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वन प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। ये धरती के हरे भरे फेफड़े होते हैं जो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं। आज बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण जंगलों को तेज़ी से काटा जा रहा है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए वनों की रक्षा करना हम सभी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। पेड़ हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। इसके साथ ही वन बारिश लाने में मदद करते हैं और धरती के तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। जंगल लाखों जंगली जानवरों, पक्षियों और कीट पतंगों का प्राकृतिक आवास माने जाते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है और भूमि उपजाऊ बनी रहती है। वनों से हमें लकड़ी, फल, गोंद और कई प्रकार की जीवन रक्षक औषधियां भी मिलती हैं। दोस्तों, इंसान अपनी सुख सुविधाओं और लालच के लिए जंगलों को नष्ट कर रहा है। फैक्ट्रियां बनाने, सड़कें बिछाने और नए शहर बसाने के लिए लाखों पेड़ हर साल काटे जा रहे हैं। इसे वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। इसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, सूखा पड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसके तहत धरती का तापमान बढ़ने लगता है। अब वनों को बचाने के लिए हम सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन के खास मौकों पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। बिना वजह पेड़ों को काटने से खुद भी बचें और दूसरों को भी रोकें। कागज पेड़ों से बनता है, इसलिए कागज को भी बर्बाद न करें और इसका दोबारा उपयोग करें। अपने आसपास के लोगों, दोस्तों और परिवार को वनों के महत्व के बारे में बताएं और उन्हें पेड़ लगाने के लिए जागरूक करें। दोस्तों, ईंधन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटने के बजाय सूखी और गिरी हुई लकड़ियों का ही इस्तेमाल करें। कहते हैं, वन है तो कल है। वनों की रक्षा करके हम किसी और पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपना खुद का ही भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। सरकार नियम बना सकती है, लेकिन जब तक देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक पर्यावरण को बचाना मुश्किल है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम पेड़ों को बचाएंगे और अपनी धरती को फिर से हरा भरा बनाएंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में

0: एडमिशन ओपन KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दोस्तों, युवाओं में बढ़ती नशे की लत आज हमारे समाज की सबसे बड़ी और चिंताजनक समस्याओं में से एक है। देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा इस दलदल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी देश की असली ताकत उसके युवा होते हैं। युवा देश की प्रगति और विकास के आधार स्तंभ होते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रही है, जिसमें ड्रग्स, शराब, सिगरेट, गुटखा वगैरह शामिल होते हैं। ये समस्या न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर रही है। समय रहते इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। युवाओं में नशा बढ़ने के पीछे कई मुख्य सामाजिक और मानसिक कारण होते हैं। कई बार युवा अपने दोस्तों के बीच कूल या आधुनिक दिखने के चक्कर में नशा शुरू करते हैं। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, बेरोजगारी और निजी जीवन की परेशानियां युवाओं को मानसिक तनाव में डाल देती हैं, जिससे बचने के लिए वो नशे का सहारा भी ले लेते हैं। फिल्मों और सोशल मीडिया पर नशे को ग्लैमरस तरीके से दिखाया जाता है, जिससे युवा काफ़ी प्रभावित होते हैं। जिन घरों में माता पिता या बड़े बुजुर्ग नशा करते हैं, वहाँ बच्चों में ये लत लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आज के समय में सिगरेट, शराब और नशीली दवाएं युवाओं को बहुत आसानी से मिल जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, नशे की लत के परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होते हैं। नशा करने से लिवर, फेफड़े और दिल की गंभीर बीमारियाँ होती हैं। कभी कभी तो मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है और याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। नशीले पदार्थों को खरीदने के लिए जब पैसों की कमी पड़ती है, तो युवा चोरी, लूटपाट और हिंसा जैसे अपराधों के रास्ते पर चल पड़ते हैं। नशे में डूबा युवा ना तो पढ़ाई पर ध्यान दे पाता है और ना ही अपने करियर पर, जिससे उसका पूरा भविष्य अंधकारमय होने लगता है। इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करने होंगे। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, ताकि वो अपने मन की बात उनसे शेयर कर सकें। साथ ही बच्चों की संगति और उनकी आदतों पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। अगर हमारी युवा पीढ़ी नशे के अंधकार में खो गई, तो देश का विकास रुक जाएगा। इसलिए युवाओं को ये समझना होगा कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद एक बहुत बड़ी समस्या है।

दोस्तों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। तो आज का सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे कल के पूछे गए सवाल का सही जवाब। हमारा कल का सवाल था, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही जवाब है, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, लोकटक लेक यानी लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक लेक यानी लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: जिंदगी हर पल चंदन का एहसास।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित।

0: होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
0: गीतकार
1: और संगीतकार
0: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
0: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
0: सुनिए सुबह 10:05 पर,
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: पंचो जय हिंद।
3: हाँ भैया, देखा नारा लगल अपन बैठ के शुरू भेल भैया।
4: भैया देखा, हमन के अपने पंच भाई लोगन के और खास तौर से अपने युवा भाई लोगन के कुछ न कुछ जानकारी ऐसा दिहल जाले जौने से कि वो अपन खुद रोजगार कर सकें और 2-4-10 लोगन के भी रोजगार दे सकें।
3: हाँ भैया देखा, करे खाते जौन बा अपन जौन सरकार बा उहो जौन बा तरह तरह के योजना ले आवे ले,
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ताकि जौन बा स्वरोजगार सृजित हो सके और अधिक से अधिक लोगन के कर लाभ मिले।
4: बिल्कुल भैया देखा, ये बतावल चाहते हैं अपने पंच भाई लोगन के कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यही तरह के एक ठोसन कार्यक्रम बा जौने में कि अपने पंच भाई लोग और ख़ास तौर से जे भी युवा बा, कहले के मतलब ही कि जेकर उम्र 18 या उससे आगे बा, उ सब लोग जौन है लोन लेके और अपन उद्यम स्थापित कर सकेले।
3: हाँ भैया, रोजगार स्वरोजगार तो देते बा सरकार, करे साथे साथे जौन बा वो खुद जौन बा मालिक बनावल ओकर मकसद बा।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: एकरे खातिर बैंक से कई तरह का लोन भी देतिया जौने में अधिक से अधिक सब्सिडी भी मिलता, ताकि पूरा एक तरह से कहल जाए कि पूरा लोन चुकाए ना पड़ला और 25-50% तक के बीच में जौन बा ये सब्सिडी सरकार देतिया।
4: भैया देखा, ये जौन निर्माण क्षेत्र बा एकरे खातिर जौन है 50 लाख रुपया तक, और जौन सेवा क्षेत्र बा एकरे खातिर 20 लाख रुपया तक के ऋण मिल सकाला। इसमें जौन है 15% से लेके 35% तक का हिस्सा जौन है सरकार सब्सिडी के रूप में दे देले। सामान्य वर्ग खातिर ही जौन है 25%, ग्रामीण क्षेत्र खातिर और शहरी क्षेत्र खातिर ही 15% बा। यही तरह से हर श्रेणी के अलग अलग विवरण बा। इसमें जौन है अनुसूचित जाति खातिर, अनुसूचित जनजाति खातिर, पिछड़ा वर्ग खातिर, महिला खातिर, दिव्यांग खातिर, पूर्व सैनिक खातिर और पूर्वोत्तर क्षेत्र खातिर ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% सहायता के प्रावधान भा।
3: और भैया के साथ साथ जैसे कि कई तरह के जौन बा उद्योग शुरू करे खातिर जौन बा लोन मिला था, जौने में कि आटा दाल तेल मिल यूनिट लगाए खातिर, चाहे मसाला यूनिट लगाए खातिर, पापड़, चाहे डेयरी, चाहे शहद, ओकर साथ साथ भैया मिट्टी के बर्तन के कारोबार बा, चाहे लकड़ी के फर कारोबार बा, चाहे चमड़ा के, गारमेंट, सिलाई, खादी, बुनाई, ये सब भैया कई जौन बा
4: कई तरह के हमें काम कर सकें लोग।
3: हाँ,
4: एक खातिर भैया देखा जन समर्थ पोर्टल बा या KYIC PMEGP ए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपने पंच भाई आवेदन कर सकें। एक खातिर आधार कार्ड लगी, शैक्षिक प्रमाण पत्र लगी, परियोजना के जौन प्रतिवेदन बा रिपोर्ट बा ऊ लगी, और अगर लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र लगी।
3: हाँ भैया, और भैया एक साथ साथ भैया जे भी एक लाभ ले चाहता है ओकर उम्र 18 से ऊपर,
4: बिल्कुल भैया, हाँ
3: तब योजना के लाभ मिली।
4: भैया देखा, कुछ जानकारी अपने पंच भाई उनके दियावल गए, यही योजना का लोग लाभ ले सकें और दूसरे के भी लाभान्वित कर सकें, खुद अपन रोजगार करके अपन आय भी बढ़ा सकें। हम चाहते हैं कि अपने पंच भाई लोगन के एक लोकगीत सुनावल जा, अंजनी कुमार ये निर्गुण सुनावत आते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है

0: 024075 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumbai।

0: और इनसे बतियाव था डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण।
1: नमस्कार। देखिए, शरीर को जितना आप सहूलियत के साथ रखेंगे, जितनी सावधानी के साथ रखेंगे, उतनी आप स्वस्थ रहेंगे, आपका जीवन उतना आसान होगा, उतना सहज होगा। इसके बावजूद कई बार हम अपनी लापरवाही के कारण बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं, विशेषकर खान पान में पानी की गड़बड़ियों के कारण। खास करके गांव के क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं। उनमें भी जो इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो है नाक और गले का इन्फेक्शन, और लोगों को सर्दी जुकाम पहले आती है, छींक बहुत पहले आने लगती है। तो ये क्यों होता है और फिर इसके साथ जुड़ी हुई और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रख्यात नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो आम समस्या है कि सर्दी जुकाम और छींक आना, ये बहुत ज्यादा सामान्य रूप से लोगों को आता है। कभी कभी तो होता है कि व्यक्ति सुबह उठता है उसके साथ ही उसे छींक आने लगता है। कभी कभी अगर मौसम बदल रहा है तो उस समय भी छींक बहुत ज्यादा आती है, सर्दी जुकाम होने लगता है। और कभी कभी किसी को लगता है कि आदतन उनके जीवन में हमेशा ही छींक आती रहती है, दिन भर छींक आना। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये जो छींक है ये कितना घातक है हमारे शरीर के लिए।
2: छींक घातक तो नहीं कह सकते, लेकिन छींक एक तरह का इंडिकेशन है जो आपको बता सकता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है। छींक एक लक्षण है, इसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आगे आप इसका इलाज करा सकते हैं। आमतौर पे भारतवर्ष में एलर्जी बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग हैं जो एलर्जी से पीड़ित हैं, जिनको पता नहीं है कि उनको समस्या क्या है। तो बार बार छींके आना, नाक से पानी आना, नाक में खुजली बहुत ज्यादा होना, सुबह उठते हैं लगातार छींके आती हैं, तो ये लक्षण है। एलर्जिक राइनाइटिस होती है कंडीशन, नाक की एलर्जी जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। तो ये इनिशियल स्टेज होता है, एलर्जी नाक से चालू होती है। आदमी अगर व्यक्ति अपने इस दिक्कत को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनकी बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। यही है, अगर इस छींक को अगर हम आगे नहीं ध्यान देते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो आगे जाके जो आज के समय में हम लोग अस्थमा सुनते हैं बहुत कॉमनली, सांस की दिक्कत होती है, छाती में फेफड़े में चली जाती है एलर्जी, तो अस्थमा का रूप धारण करती है जो कि प्राण घातक होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर नाक कान गले की बात करें तो ये देखने में तो बड़ा छोटा लगता है कि इससे जान तो नहीं जाती है, लेकिन कई बार इसकी समस्या बहुत परेशान करती है।
2: बिल्कुल,
1: कान में अगर हल्का सा दर्द शुरू हो जाए तो कान तो बिल्कुल लगता है जैसे कि जीवन ही दूभर हो गया है। इसी तरह से नाक के साथ भी होती है, लेकिन जो मुख्य समस्याएं आती है नाक कान गले के साथ, वो क्या क्या समस्याएं आती है?
2: मेन समस्या सर, बीमारियां तो बहुत सारी हैं, बहुत बीमारियां हैं जो कान नाक गले से संबंधित हैं। कहने को तो बहुत छोटे से जगह है, कान बहुत छोटा सा होता है, नाक बहुत छोटा सा एक ऑर्गन है, गला छोटा सा है, लेकिन इनकी बीमारियां अनेक हैं। कान में बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि दर्द होना कान में बहुत कॉमन बात है, और कान का दर्द ऐसा होता है असहनीय होता है। जब तक आप किसी कान के डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, चांस बहुत कम है कि आपको दर्द में आराम आए। आप दर्द की दवा ले लेंगे लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला। तो कई कारण होते हैं, कान में बहुत कॉमनली इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। कान में पानी चला जाता है जिसकी वजह से कान के पर्दे में सूजन हो जाती है, कान में मैल जम जाता है, वो मैल बहुत ज्यादा दर्द करता है। कान में फंगस का इन्फेक्शन होता है, जो लोग डायबिटिक हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें कान में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और ये सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। वैसे ही गले में टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गया, भोजन की नली में इन्फेक्शन हो गया जिसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं, सांस की नली में इन्फेक्शन है उसको लैरेंजाइटिस बोलते हैं। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो कि लोग ध्यान नहीं देते कि हाँ हो गया, ठीक हो जाना चाहिए, कुछ दिनों तक वेट करते हैं और वो आखिरकार सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही नाक में छोटी मोटी दिक्कतें चालू होती है, नहीं ध्यान देते हैं, तो आगे जाके नाक में कभी कभी मांस बन जाता है एलर्जी के कारण, कभी इन्फेक्शन के कारण नाक से खून आना बहुत कॉमन है। ये सब परेशान करने वाली चीजें हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कान में है कि आपने कहा कि जैसे कान में पानी चला जाता है और पर्दे में सूजन आ जाती है, पर्दे में और किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, और इसको लोग सामान्य रूप से जैसे गांव में रहते हैं तो कान में तेल डाल लिया या कुछ और ऐसी चीज डाल लिया, साफ करने में खुद ही वो माचिस की तीली से या कोई रुई लगाकर लकड़ी से वो साफ करते हैं और वो और घातक हो जाता है। तो ये जो कान में तेल डालने की जो परंपरा है, ये कितने घातक है?
2: भगवान ने कान ऐसा बनाया है कि उसको खुद साफ करने के लायक बनाया है ऊपर वाले ने। कान में जो गंदगी होती है वो स्वयं अपने आप अंदर से बाहर प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है जिससे कि मैल बाहर निकलती जाती है। तो कभी भी हमें अपने कान को खुद से साफ नहीं करना चाहिए, कभी भी उसमें तेल ना डालें, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, खुद से कान साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कराना है तो किसी भी कान के डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। कान में तेल डालना, कान में माचिस की तीली से साफ करना, ये सब इन्फेक्शन भी करते हैं, और कान का पर्दा बहुत बारीक होता है। 1 मिलीमीटर के भी आप 10 टुकड़े अगर कर दें तो 0.1 मिलीमीटर उसकी थिकनेस होती है। तो उसमें अगर डैमेज होता है

0: तो कान के पर्दे में छेद हो जाता है, और किसी किसी मरीज में फिर आगे जाके उसको ऑपरेट करना पड़ता है, वो बीमारी इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। तो कभी भी कान खुद से साफ नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कहीं पढ़ा था कि जो कान है वो सिर्फ सुनने का ही काम नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर को बैलेंस करने का भी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति डगमगा के चल रहा है और उसकी चाल कुछ चेंज हो रही है, तो अगर ENT के डॉक्टर देखेंगे तो कहेंगे कि आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है, और उसका इलाज दूसरे तरीके से होता है। तो बैलेंस करने में शरीर को कान की क्या भूमिका है?
0: कान, एक जो हमारा कान है उसका तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो जो सबसे अंदर का भाग होता है कान का, वहां से कान की नस जाती है जो दिमाग से कनेक्टेड होती है, और उसका काम होता है शरीर के बैलेंस को मेंटेन करना। तो उस नर्व में जैसे उम्र के साथ कभी कभी नस कमजोर हो जाती है, कभी चोट की वजह से हो जाता है, कभी नसों के ट्यूमर के कारण हो जाता है, तो हमारे नर्व जो हमारे कान का इनर ईयर है वो मैकेनिज्म हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। और वो जब डिसबैलेंस हो जाता है तो चक्कर आना
1: जी,
0: तो ये बहुत बड़ा लक्षण होता है जो कि आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता। चक्कर आता है तो उनको पता ही नहीं होता इलाज कराना किससे है
1: जी, जी, जी।
0: तो मरीज परेशान होता है, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। तो बहुत कॉमन होता है कि, और लोग इग्नोर कर देते हैं कि कान की भी समस्या है, उससे रिलेटेड चक्कर हो सकता है, ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो थोड़ा सा इस बारे में अवेयरनेस फैलाना काफी जरूरी है। हम ही लोग को ये काम करना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे उनको जरूर समझ में आ रही होगी ये बात, कि अगर आपको चक्कर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर की चोट हो या सिर में या आंखों में कोई दिक्कत हो सकती है, कान की भी दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में अपने फिजिशियन से संपर्क करने के बाद अगर आपको बहुत लाभ नहीं हो रहा है तो आप एक बार ENT के विशेषज्ञ से भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नाक की अगर बात करें तो जाड़े का अब समापन है और गर्मी आने वाली है, और गर्मी में नाक सूखने की बड़ी समस्या होती है, और सूखते हैं तो लोग उंगली से उसको कुछ कोशिश करते हैं उसको तर करने का, और उस चक्कर में उनके नाक से खून भी आने लगता है। तो इसका रीजन क्या है और इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए?
0: मौसम चेंज की वजह से कई सारे लोगों में नाक की जो चमड़ी होती है वो काफी ड्राई हो जाती है, सूखा पन आ जाता है
1: जी।
0: तो चिकनाई की कमी के कारण ही वहां पपड़ी जमती है, और लोग उसको आमतौर पर साफ करते हैं और वहां से ब्लड आना चालू हो जाता है
1: जी।
0: तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस इतना ही ध्यान रखें कि अपनी नाक की चिकनाई को मेंटेन करें, बिना मतलब नाक को जोर से छिनकना नहीं होता, नाक साफ नहीं करना है, इन चीजों से बचें, इन आदतों का थोड़ा परहेज करें।
1: हाँ।
0: और नाक में चिकनाई करें, जैसे घर पे आमतौर पे गांव में लोग अपने नाक में घी डालते हैं जो कि पुरानी प्रैक्टिस है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये नाक को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, तो ये अच्छी चीज है। नाक में थोड़ा बहुत तेल हल्का फुल्का कभी कभार डाल सकते हैं। तो ड्राइनेस बहुत बड़ा कारण है, वो क्रस्टिंग होती है नाक के अंदर, और वो क्रस्ट निकलते हैं, पपड़ी निकलती है, और वहाँ की जो सतह होती है नीचे की, वहां से ब्लड आना फिर चालू हो जाता है, और वो काफी परेशान करता है।
1: तो श्रोताओं, दो बातें डॉक्टर साहब की आप ध्यान में रखेंगे कि कान में कभी भी तेल नहीं डालना है, और नाक में अगर जरूरत हो तो हल्का सा घी लगा सकते हैं ताकि उसकी ड्राइनेस खत्म हो जाए और वो गीलापन बना रहे। डॉक्टर साहब, नाक से अगर हम थोड़ा अंदर की तरफ चले तो गला आता है, और गले में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी कोई गटकने में लोगों को गले में दर्द होता है, कभी कुछ टोटका भी करते हैं लोग, तो गले में जो दर्द होता है कुछ गटकने में, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और गले की एक और समस्या जो बहुत आम है वो है खांसी आना। गले से जब खांसी आती है तो भी तकलीफ होती है, तो इन दोनों चीजों के विषय में कुछ बताइए।
0: गला तो सर इन्फेक्शन बहुत कॉमन है गले में आज के टाइम पे, प्लस मौसम चेंज की वजह से गले में एलर्जी भी बहुत प्रभावित करती है। तो हमारे भोजन की नली, सांस की नली और गले में टॉन्सिल्स होते हैं, ये तीन चीजें आमतौर पे अफेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से खाना खाने में दिक्कत होना, थूक निकलने में परेशानी होना, गले में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये कॉमन इन्फेक्शन होते हैं गले में। इसके अलावा हमारे भारतवर्ष में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इनका सेवन भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीजें भी गले को प्रभावित करती हैं, आगे जाके बड़े रोगों का, कैंसर का भी फॉर्म ले सकती हैं।
1: हाँ हाँ।
0: तो हमें सतर्क होना चाहिए, गले में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तुरंत आसपास किसी भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओरल कैविटी का कैंसर, मुंह का कैंसर और सांस की नली का, लैरिंग्स का कैंसर भारत का सबसे ज्यादा, ये दोनों मिला के नंबर वन कॉजेज ऑफ कैंसर है इंडिया में, और इनके बारे में अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है लोगों में, लेकिन लोग आमतौर पर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इनको छोड़ नहीं पाते।
1: हाँ।
0: और ये आगे बीमारियां करती ही करती हैं।
1: जी, जी,
0: तो इनको बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल प्रयोग में ना लें, इन आदतों को छोड़ें, और खाना पीना अच्छा रखें, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाना, चाय पीना भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है।
1: तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चीजें हैं, कई बार कहते हैं कि टॉन्सिल की जो समस्या होती है, टॉन्सिलाइटिस जैसे कहते हैं, कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, गले में दर्द होता है और उसके साथ वो खांसी आती है, तो इसका उपाय लोग कई बार कहते हैं कि इसको ऑपरेट करके निकलवा देना, ये क्या ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है इसका?
0: सभी टॉन्सिल के मरीजों में ऑपरेशन जरूरी नहीं है, सब में किया भी नहीं जाता। टॉन्सिल में नॉर्मली इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की दवाइयां चलती हैं, एंटीबायोटिक्स और सूजन कम करने के लिए दवाइयां, ये सारी चीजें ज्यादातर 90% लोगों में

0: कारगर होती हैं और इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है हफ्ते 10 दिन में। किसी किसी मरीज में ये बार बार होते हैं लक्षण, साल में कई बार जब होने लगे या कई सालों से लगातार दिक्कत करे उन्हीं स्पेसिफिक मरीजों में हम ऑपरेशन करते हैं। हर मरीज में टॉन्सिल का ऑपरेशन जरूरी नहीं होता है।
1: हाँ भैया, भेंटवार्ता सुन गए, नाक कान गला की प्रमुख समस्याएं और उसका निदान जानकारी देते रहे हैं डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव और भैया इनसे बतिया हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण, तो इनके ध्यान धन्यवाद। अब भैया देखें अपने स्टूडियो के जो घड़ी बहु इशारा करती है कि अपने बैठकी का समय पूरा होता तो चल जा। पंचो जय हिंद।

अभी हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सवेरे जम्मू कश्मीर के पहलगाम आ बालतल राय से शुरू हो गई। पूरा देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन के तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करिए हैं। ये बीचे तीर्थयात्रियों के लिखल एगो चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालाना अमरनाथ यात्रा के देश को आध्यात्मिक रिवाज आ सांस्कृतिक एकता में एगो शाश्वत अध्याय बतौलें।
1: पत्र के जरिए प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 9वां उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। एह मौका पर मुख्यमंत्री कहलें कि ई आम महोत्सव खाली प्रदेश नाही बल्क देश के किसानों नु बदे अपने उत्पादन के प्रदर्शनी का एगो मजबूत मंच हो।
2: मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सकते हैं। एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। AI, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मंडियों के माध्यम से एक स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की दिशा में भी हमें अग्रसर होने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपनिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित

0: चित करनी होगी। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है जो आज की आवश्यकता है।
1: ऐसे पहले मुख्यमंत्री अजूय लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन आप प्रबंधन अकादमी के 464 करोड़ रुपया से बेसी की लागत से बनल नया परिसरों का लोकार्पण कैन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एगो उच्च स्तरीय बैठकी में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यन का समीक्षा कैन है। वहाँ के आश्रय गृहन सह प्रशिक्षण केंद्रन आ हाफवे होम में रहे वाले संवासी लोगिन के भरण पोषण बदे अनुदान राशि 2000 रुपया से बढ़ा के 3000 रुपया हर महीना कैले के फैसला कैले हैं। एगो रिपोर्ट।
2: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
1: एटा जिला के बागवाला थाना क्षेत्र में किलार मऊ गांव के लगे काल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 5 जने का मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं। हमरे एटा प्रतिनिधि बतौने कि फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रहल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का एगो बस तकनीकी खराबी के नाते सड़क के किनारे खड़ा रहल। यही दौरान पाछे से आ रहल एगो तेज रफ्तार कैंटर बस के ठोकर मार देहलस। ए टक्कर के बादे एगो औरियो गाड़ी दुर्घटना के चपेटा में आ गई। एटा का डीएम अरविंद सिंह बतौने कि घायल लोगिन के समुचित इलाज के इंतजाम कैल गैल बा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार ऐप के जरिए आधार में ईमेल के सोझे अपडेट का सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करौले हो। ये सुविधा 1 जुलाई से शुरू होके 6 महीना खातिर लागू बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इस बीच तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया।
3: पत्र के जरिए प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षा बंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 9वें उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसानों के लिए भी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी का एक सशक्त मंच है।
0: मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सकते हैं। एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। AI, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मंडियों के माध्यम से एक स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की दिशा में भी हमें अग्रसर होने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपनिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट्स

0: सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित करनी होगी। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है जो आज की आवश्यकता है।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज ही लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नवीन परिसर का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
2: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
1: एटा जिले के बागवाला थाना क्षेत्र में किलार मऊ गांव के पास कल देर रात एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं। हमारे एटा प्रतिनिधि ने बताया कि फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस तकनीकी खराबी के कारण सड़क के किनारे खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने बस को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद एक अन्य वाहन भी दुर्घटना की चपेट में आ गया। एटा के जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है।
3: तत्काल ही मौके पे जो हैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए थे और मैं और एसएसपी साहब भी जो हैं तुरंत इमरजेंसी में आ गए थे। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमओ साहब भी हैं। तो हमारा पूरा अमला इस चीज़ के लिए है कि तुरंत जो है मैक्सिमम लोगों को हम रेस्क्यू कर पाएँ, अच्छा इलाज दे पा रहे हैं।
1: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल के सीधे अपडेट की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से शुरू होकर 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पंचो जय जवान जय किसान।
1: भैया देखा यही नारा के साथ अपने आज के कार्यक्रम शुरू हो गए।
2: हाँ भैया,
1: भैया अपने किसान भाई लोग ई हमेशा से काम करत भी आवेल हैं, हमन के समय समय पर उनके याद दिया दिया जाला। भैया कोनो भी फसल बढ़िया उगावे के बा, उत्पादन अच्छा लेवे के बा, रोग बीमारी से अगर फसल के बचावले रहे के बा, तो इसमें बीज शोधन का बड़ा महत्व होला।
2: हाँ भैया, बिना बीज शोधन का जौन बा अगर बुआई हो गई तो फिर ओकर गारंटी ना रहला कि ओकर उत्पादन कैसन रहे।
1: बिल्कुल भैया,
2: कहाँ की पते ना चल पाला कि कितना जामी कितना ना जामी। ये लिए बीज शोधन एक तरह समझिए कम खर्च में और लाभकारी
1: बिल्कुल ई काम होला है। सही कहा भैया, ई बरसात के मौसम भी चलत है भैया, और यह समय तो ई बहुत जरूरी हो जाला। हालांकि ई कहल जाला हमेशा कि कोनो भी मौसम हो के कोनो भी फसल हो के बीया के शोधन जरूर कह ले
2: जरूर करे चाहिए।
1: लेकिन जैसे कहली है ना हम कि बरसात के मौसम चलता और यह समय नमी ज़्यादा हो जाले, तो एकरे नाते जौन है फफूंद के प्रकोप जौन है संभावना रहे ले भैले के, तो ऐसे बचे खातिर भी बीज शोधन बहुत जरूरी है। करे साथे साथे कीड़ा से बचाव खातिर, रोग बीमारी से बचाव खातिर, बेहतर अंकुरण खातिर, और जड़ के विकास अच्छा हो के मजबूत हो के और पौधा स्वस्थ हो के एकरे खातिर भी जौन है बीज के शोधन बड़ा जरूरी होला। कहली हो जाला वैज्ञानिक लोग भी बतावे हैं कि अगर बीज के शोधन करके बुआई कैल जा तो उत्पादन में 20-30% तक का फायदा हो सकला।
2: हाँ भैया, ये तो
1: एक बात यो ध्यान रखे वाली हमें है कि अगर बीज उपचारित कैले बाटे तो ओके धूप में न सुखावें, हमेशा बीज के छाया में ही सुखावें, और एकरे खातिर जौन भी रसायन उपयोग करत आटे वो घर में ऐसे जगह रखें जहाँ बच्चा न पहुँच पावें और अपने भी या पशु न पहुँच पावें, वहाँ वही जगह रखें। और एकरे साथे साथे जब भी बीजोपचार करत आटे साबुन से हाथ धोले करे बाद, और केहू भी छोट लड़का बा या जे अनजान बा ओकरे पहुँच से कि हमेशा दूर रखें।
2: हाँ भैया, जौन भी ओमन दवा लगता तो उसे अपने भी बचले जरूरत है और अपने परिवार के भी बचले जरूरत है। कांच की दूरी ना रहे तो फिर उसे कोनो दिक्कत हो सकता।
1: कोनो भी भैया सब्जी हो खे चाहे कोनो फसल हो खे अगर बीज शोधन करत आटे उचित रीत से अपने किसान भाई लोग, तो एकर बड़ा फायदा मिलला। और आगे चल के ये बात पता चलेगी कि भैया बीज शोधन जो नहीं कैले रहला और जो कैले रहला दोनों में अंतर हो जाला, लागत के अंतर हो जाला, उत्पादन के अंतर हो जाला।
2: हाँ भैया, कांच के बिना शोधन के अगर जो कोई बीज बोआ गया और उमन अगर रोग
1: लग गए भैया तो समस्या आगे
2: तो
1: हो
2: जाए,
1: खर्चा बढ़ जाला लोगों
2: से ज्यादा भैया खर्चा बढ़ जाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब भैया देखा हमन के हमेशा ही कहा जाला ना कि मोटा अनाज जो है खाइल जाए, पहले मोटा अनाज लोग खात रहना स्वस्थ भी रहत रहना। फिर से अब वह बात भैया देखा शुरू हो गई बा और ए पर बड़ा लोग जोर देता है श्री अन्न जौन कहल जाला, एक मोटा अनाज के नया नाव दिहल गए श्री अन्न, और भारतीय कृषि के ई अनमोल धरोहर है। यह विषय पर अपने पंच भाई लोग जानकारी लें हर्षित पालीवाल से।
3: श्री अन्न मिलेट्स भारतीय कृषि की एक अनमोल धरोहर। हम चर्चा करेंगे मिलेट्स के महत्व, उसकी खेती और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर। और आज हम जानेंगे कि कैसे मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य, हमारी कृषि और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। मिलेट्स का इतिहास और महत्व के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि मिलेट्स का इतिहास बहुत पुराना रहा है और ये भारतीय कृषि संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं। इसे हजारों सालों से भारतीय किसानों द्वारा उगाया जा रहा है। मिलेट्स को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, सांवा और चना। आज जिस मोटे अनाज की चर्चा हो रही है वह भारत के लिए नया नहीं है। ज्वार के सबूत जो भारत में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में भी मिले हैं, अपने देश में 3000 से 5000 साल पहले से इस मिलेट्स के खाए जाने वाले सबूत मौजूद हैं। चूंकि ये हमारे लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारी रगों में बहने वाले खून के लिए, हमारे एंजाइम्स और हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारी जीव के लिए, सीधे कहें तो हमारे डीएनए के लिए भी ये नए नहीं है। हमारा शरीर इन्हें अच्छी तरह पहचानता है। पहले के समय में मिलेट्स को गरीबों का अन्न भी कहा जाता था। भारत में मिलेट्स की खेती विभिन्न राज्यों में बहुत पुरानी है। इसे प्राचीन समय से ही अन्य अनाजों के साथ मिश्रित कर उपभोग किया जा रहा है। इसका उपयोग भारतीय भोजन पद्धतियों में बहुत व्यापक रूप से होता आया है। विशेष रूप से उत्तर भारत में ज्यादा तरह के मिलेट्स उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में भी इनका उपयोग व्यापक है। मिलेट्स का महत्व उसकी पौष्टिकता, उसके गुण और उसके पर्यावरणीय संरक्षण में है। ये अनाज देश में अलग अलग क्लाइमेट्स में उगाए जा रहे हैं और कम पानी में भी अच्छे उत्पादन का स्रोत।

हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मिलेट्स विभिन्न बीमारियों के इलाज में भी मददगार हो सकते हैं, और यह भी एक प्रमुख कारण है कि इनका उपयोग आजकल स्वास्थ्य के लिए भी बढ़ रहा है। इस प्रकार से मिलेट्स भारतीय कृषि, आहार और स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो अपनी विविधता और प्राकृतिक स्वाभाविकता के लिए प्रसिद्ध है। मिलेट्स यानी श्री अन्न के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यह भारतीय खाद्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये खाद्य सामग्री पौष्टिकता से भरपूर होती है। ये छोटी बीज वाली घास के प्रकार की होती है और वनस्पति प्रजाति पोइसी से संबंधित होती है। मिलेट्स का सेवन अधिकतर रोटी, खिचड़ी, उपमा और दाल के साथ किया जाता है। इस अनाज की खासियत यह है कि ये सूखे और कम पानी वाली भूमि में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं, इसलिए मिलेट्स भारतीय किसानों के लिए एक वरदान के रूप में माना जा रहा है, विशेषकर उन इलाकों में जहाँ जल की बहुत कमी है। मिलेट्स न केवल पर्यावरण के लिए उपयुक्त है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाव में सहायक। भारत में मिलेट्स मुख्यतः दो प्रकार के उगाए जाते हैं, मुख्य मिलेट्स जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी है, और छोटे मिलेट्स जिसमें फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट्स, कोंदो, प्रोसो और वॉर्नयार्ड मिलेट्स शामिल है। जिसमें अगर हम बात करें रागी, जिसे हम फिंगर मिलेट्स भी कहते हैं, रागी में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है और यह मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभकारी है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। वहीं हम ज्वार की बात करें, जिसे हम सॉर्गम कहते हैं, ज्वार में फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है और हृदय रोग के जोखिम को कम करती है। यह ग्लूटेन फ्री होता है जिससे यह ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। बाजरा, जिसे हम पर्ल मिलेट के नाम से भी जानते हैं, बाजरा में आयरन और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे यह एनीमिया और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सहायक होता है। इसमें फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है जो वजन नियंत्रण में मदद करता है। कोदो, जिसे कोदो मिलेट के नाम से जानते हैं, कोदो में प्रोटीन, फाइबर, आयरन की मात्रा बहुत उच्च पाई जाती है। यह मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। कुटकी, जिसे हम लोग लिटिल मिलेट्स के नाम से जानते हैं, कुटकी का सेवन पाचन को सुधारने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। सांवा, जिसे हम वॉर्नयार्ड मिलेट्स कहते हैं, सांवा ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है। यह मधुमेह रोगियों को और वजन कम करने वालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। वहीं मिलेट शरीर में ट्राइग्लिसराइड, जिसे खून में मौजूद फैट और रिएक्टिव प्रोटीन को कम करते हैं, यह वजन से व हार्ड से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मददगार होती है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, इसीलिए यह पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत सहायक है। मिलेट से ग्लूटेन या नॉन ग्लूटेन एलर्जी की समस्या भी नहीं है। दरअसल गेहूं में मौजूद इस प्रोटीन या दूसरे तत्वों की वजह से एलर्जी की समस्या भी पैदा हो जाती है। रागी में दूसरे मिलेट्स की तुलना बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, इसीलिए इसे दूध का विकल्प भी कहा जाता है। वहीं बाजरा में आयरन की अधिकता होती है। मिलेट्स की खासियत है कि यह फैटी लिवर की परेशानी को दूर करने में मददगार है। चूंकि यह पचने में वक्त लगाता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसलिए खाने के बाद शरीर में शुगर का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, यानी डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत उपयोगी है। मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम बाकी अनाज खाना छोड़ दें। हमें चावल, गेहूं, मक्का सभी को अपनी थाली का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर एक हफ्ते में 14 मील मतलब एक दिन में दो बार लंच और डिनर में से 4 से 5 मील में भी हमने मिलेट्स का सेवन किया तो हमारा शरीर का काम चल सकता है। इसका शुरुआत मल्टीग्रेन आटे के रूप में भी कर सकते हैं। कुछ लोग जिन्हें खाना पचाने की समस्या होती है, यह उनमें पाचन तंत्र की खराबी से या फिर जेनेटिकली भी हो सकता है, ऐसे लोगों को सामान्य भोजन पचने में भी दूसरे लोगों की तुलना में दुगना या उससे ज्यादा वक्त लग जाता है। ऐसे लोगों को मिलेट्स खाने से पहले इसकी डाइटिशियन से सलाह ले लेनी चाहिए। अगर वहीं हम वैश्विक वितरण और उत्पादन के स्तर पर हम देखें तो भारत, नाइजीरिया और चीन दुनिया के मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह वैश्विक उत्पादन में 20% और एशिया के उत्पादन में 80% तक की हिस्सेदारी रखता है। वहीं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की पहल के अनुसार वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज या पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स मनाने के वर्ष 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने के भारत के प्रस्ताव को
वर्ष 2018

0: 2018 में FAO द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया। इसे संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया है। इसका नेतृत्व भारत ने किया है तथा इसका 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। भारत की मिलेट्स क्रांति मोटे अनाजों के स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय लाभों में बढ़ती जागरूकता के साथ साथ पारंपरिक कृषि अभ्यासों को पुनर्जीवित करने और मोटे पैमाने पर किसानों को समर्थन देने के प्रयास से प्रेरित है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का उद्देश्य यह था कि खाद्य सुरक्षा और पोषक अनाज बाजरा मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता का प्रसार करना, पोषक अनाज के टिकाऊ उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करना। वहीं मिलेट्स की खेती प्रमुखतः राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में होती है। वह इसके साथ साथ राज्य के कई भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितिक व राज्य के भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिलेट्स की खेती होती है। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। मिलेट्स की खेती कम पानी में भी उगाई जा सकती है और इसके लिए कम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। मिलेट्स की जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। सरकार की तरफ से मिलेट्स की खेती और उपभोक्ता को प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। नेशनल मिलेट्स मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, प्रशिक्षण और सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत मिलेट्स के उत्पाद को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया जा रहा है, ताकि गरीब और वंचित वर्ग भी इसके पोषण लाभ उठा सके। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा वैज्ञानिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नई तकनीक कृषि उपकरणों का उपयोग करके किसान अब अधिक उत्पादन कर सकते हैं। मिलेट्स की उन्नत किस्मों का भी विकास हो रहा है, इसके उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है और किसानों की आय भी बढ़ रही है। मिलेट्स की खेती में आने वाली कुछ सामान्य परेशानियां या चुनौतियां हैं, जिनके लिए सरकार अपने अथक प्रयास कर रही है। वो जो चुनौतियां सामने आती हैं वो कुछ जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी का अभाव, कृषि ऋण की कमी, बाजार पहुंच की समस्या, ज्ञान का अभाव, जैसे कई मुद्दे हैं जिन पे सरकार काम कर रही है। इनको कम करने के लिए सरकार कुछ योजनाएं चला रही है, जैसे श्री अन्न योजना। इस योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज उत्पादित करने के लिए आर्थिक मदद और कृषि संबंधित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के हिस्से के रूप में न्यूट्री सीरियल्स मिलेट्स पर उपमिशन कर रहा है। राष्ट्रीय मिलेट्स मिशन मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय मिलेट्स मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ मूल्य समर्थन योजना या मोटे अनाजों की खेती के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वहीं जैविक खेती को भी बढ़ावा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए मोटे अनाजों की जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। कुल मिलाकर मिलेट्स न केवल भारतीय कृषि व खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वातावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देने से हम न केवल अपनी सेहत सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी संस्कृत धरोहर को भी संरक्षित कर सकते हैं।
1: जानकारी श्री अन्न भारतीय कृषि की अनमोल धरोहर, यह विषय पर जानकारी देते रहे हर्षित पालीवाल जी, तो इनके दिहल जा धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि अब अपने किसान भाई लोगों के एक गीत सुनावल जा। अंजनी कुमार गीत सुनावत अटें, अपने किसान भाई ये गीत सुने।

0: आदा निर्माण आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
2: भैया विज्ञापन संदेश के पहले देखा हमन के निर्गुण सुनल गए अंजनी कुमार के स्वर में, दिहल जैन के धन्यवाद। भैया देखा आदमी के जीवन जौन है फल फूल पर और फसल पर, यही कुल पर निर्भर है।
3: हाँ भैया,
2: और इसमें भैया एक फल ऐसा बा जौन के कहा जाला कि धरती के अमृत है, समझ भी गई होबा भैया, ये आंवला के ही कहा जाला।
3: हाँ भैया, इससे भैया हाँ बहुत कई तरह का शरीर पर भी लाभ होला,
2: बिल्कुल
3: इस्तेमाल कैले से।
2: हाँ, एकर का प्रजाति बा और उनके लगौले के का तरीका बा, ए विषय पर जानकारी देते हैं डॉक्टर श्याम राज सिंह, और इनसे जानकारी दिया होता हूँ भैया विनय कुमार, अपने किसान भाई की जानकारी सुने।
4: किसान भाई, आप लोग बागवानी करे ली, बागवानी का पहला उद्देश्य होला कि कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिहल जा और ऐसा चीज उत्पादित कर जा कि घरेलू काम के अलावा एकर औद्योगिक महत्व भी होके। आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर श्याम राज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा।
5: बहुत बहुत धन्यवाद
4: डॉक्टर साहब। ये बताई कि यह पूर्वांचल में आंवला के खेती का भविष्य का है, एकरे खातिर कैसन जलवायु और माटी जरूरत पड़े ले।
5: आंवला एक व्यापारिक महत्व का फल वृक्ष है, औषधीय गुण पोषण तत्वों से भरपूर आंवले के फल प्रकृति के एक अभूतपूर्व देन है। आंवला के फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस शर्करा प्रचुर मात्रा में मिलती है, इसके सेवन को इसको अमृत फल कहा जाता है। इसका उपयोग अनेक बीमारी जैसे स्कर्वी, अतिसार, श्वेत प्रदर, मधुमेह, कफ इत्यादि में किया जाता है। इसकी जो है दवाओं के लिए और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। कृषक भाई आंवला की बागवानी करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। आंवला एक शुष्क उपोष्ण जलवायु की फसल है, इसकी खेती कम तापमान वाले स्थानों को छोड़कर अन्य जगहों पर आसानी से की जा सकती है। इसके पेड़ नए अवस्था में कम तापमान पर प्रभावित होते हैं, लेकिन बड़े होने पर कम तापमान पर भी जो है यह सरवाइव कर सकता है। सभी प्रकार के भूमि में यह जो है उगाया जा सकता है, किंतु बलुई दोमट गहरी भूमि उत्तम पाई जाती है। यह बंजर व अम्लीय ऊसर भूमि जिसका पीएच 6.5 से 9 के बीच में होता है आसानी से उगाई जा सकती है। अतः ऐसे क्षेत्रों में जहां ऊसर का क्षेत्र है, जहां पानी की कमी है या अन्य फसलें अधिक ऊसर के होने के नाते नहीं जम पाती हो पाती, वहां पर इसकी खेती आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह व्यापारिक महत्व की फसल है, कंपनियां इसको जो है प्रोसेसिंग के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए या औषधीय गुणों के लिए इसका उपयोग करती है।
4: डॉक्टर साहब, बरसात पुरहर हो गईल, यह समय अगर रोपण केहू कैल चाहे तो कौन कौन प्रजाति ले?
5: इस समय लगाने का सही समय है। किसान भाई गड्ढे बना चुके होंगे 8-8 मीटर की दूरी पर या 10-10 मीटर की दूरी पर गड्ढे बना चुके होंगे। गड्ढों का जो है करीब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहना, यानी 1 घन मीटर का गड्ढा होगा और उसमें खाद डाले होंगे। अगर दीमक की प्रॉब्लम है तो हर गड्ढे में करीब 150 ग्राम क्लोरोपाइरीफास पाउडर मिला लें और जो है सही जगह से प्रजाति को लेकर के

0: उनको लगाएं। प्रमुख प्रजातियां हैं जो पहले वाराणसी फ्रेंसिस और चकैया थी, जिसका चूर्ण बनाने के लिए या त्रिफला बनाने के लिए उपयोग होता था। अब नई प्रजातियां आई हैं जिनका चयन किया गया है, जैसे कृष्णा है, नरेंद्र 9 है, कंचन है, नरेंद्र 7 है, नरेंद्र 10 है। ये प्रमुख हैं। किसान भाई यह भी ध्यान दें लगाते समय कि इसमें परागण दूसरे पौधों के द्वारा होता है, स्वपरागित नहीं होती, अतः दो किस्मों को लगाएं। जैसे नरेंद्र 7 या कृष्णा लगाना है तो उसके साथ कंचन या चकैया का एक पौधा 10 पौधों के बीच में लगाएं। लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जैसे मुख्य फसल हम नरेंद्र 7 या कृष्णा का लगा रहे हैं तो एक लाइन लगाएं, फिर दूसरी लाइन में एक जो है नरेंद्र 7 लगाएं, एक कृष्णा का लगाएं, फिर एक नरेंद्र 7 लगाएं, फिर एक कृष्णा लगाएं। इस तरह से पॉलिनेशन देखेंगे कि चारों तरफ जितने पौधे हैं एक पौधा उनका पॉलिनेशन करेगा, जिससे कि उनके पौधों की उपज काफी बढ़ जाएगी और काफी अच्छी उपज प्राप्त होगी।
1: बहुत लोग नर्सरी से पौधा खरीदे ना, लगावे ना, कुछ दिन बाद पौधा सूख जाला। लगावा समय का सावधानी बरती कि सब पौधा जिंदा रहे।
0: किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि पौधा लगाते समय जब नर्सरी से ग्रेफ्टेड पौधा निकाले हैं, कलमी पौधे को लगाएं, बीजू पौधा नहीं। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जो है बीजू पौधे को लगा दें और उसमें जो है खुद ही पैबंद करें, कलम बांध लें, उससे अधिक सक्सेस मिलती है। दूसरा, शहर से जो नर्सरी से पौधे लेकर के लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी जितना मिट्टी में नर्सरी से जितना निकला है उतना ही दबे और उसके ऊपर ग्रेफ्ट वाला भाग उसके साथ न जाए। पानी का समुचित ध्यान रखें उन क्षेत्रों में जहां पर कि पानी का जल स्तर जमीन के में पानी काफी ऊपर आ जाता है, वहां पर जो है इसकी नहीं उसकी जो है खेती नहीं की जा सकती। ऐसे क्षेत्रों में लगाने से बचें।
1: आंवला बरसात में लगेला, जड़ के पास पानी न जमा होके, एकरे खातिर का तकनीकी अपनावें?
0: किसान भाई इसके लिए थोड़ा सा गड्ढे को ऊंचा करें, ऊंचाई पर लगाएं और किनारे से नाली बना करके ऐसा करें कि जिससे पानी जो है वो निकल जाए जो है।
2: हाँ भैया, देखिए, भेंटवार्ता सुनल गेल आंवला की प्रजातियां और उनको लगाने की विधि। भैया जानकारी देते हैं डॉक्टर श्याम राज सिंह और इनसे बतियोल ना विनय कुमार, इनके दिया धन्यवाद। हाँ भैया, देखिए अब जौन बा अपने बैठकी के समय भी पूरा होता, ओकर टाइम हो गए तो अब हम चल जा। पंचो जय जवान जय किसान।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। श्रोताओं, पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर द्वारा हमारे केंद्र को जिन विलुप्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना दी गई है उनके विवरण इस प्रकार हैं। रुफायदा खातून, पुत्री हमीदुल्ला, पत्नी शकील अहमद, साकिम कर्मा कला, थानहा बेलहर कला, जनपद संत कबीर नगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। रुफायदा खातून, पुत्री हमीदुल्ला, पत्नी शकील अहमद की उम्र लगभग 22 वर्ष है। हनुमान, पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ, साकिम धाय पोखर, थाना महुली, जनपद संत कबीर नगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। हनुमान पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ की उम्र लगभग 50 वर्ष है।

श्रोताओं, इन विलुप्त व्यक्तियों के संबंध में कोई भी सूचना पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202-4075 या 2288-6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो, तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
2: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
1: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
2: हर गली हर मोहल्ला हो साफ। स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
1: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
2: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
3: हम आकाश

आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आइए सुनते हैं रमेश प्रसाद व साथियों के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए

0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग, और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर,
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आप सुन रहे हैं रमेश प्रसाद व साथियों के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे रमेश प्रसाद व साथियों के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत। और इसी के साथ हमारा लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश समार में आइए सुनते हैं राम कृपाल यादव से उनका भोजपुरी कविता पाठ।
1: देश के प्रति सुझाव प्रेम भाव से बोल भैया दया के सीढ़ी चढ़ भाव विचार के मन में रख के आपस में जनी लड़ अपने देश पर गर्व बा तोहके ए बात के गुण कैसे उत्थान होई देश क पतन क बात न सुन दिनो दिन बा बढ़त आबादी ए पर रोक लगाव गांव नगर ना समझत बाटे ओके जा बतलाव कवन उपाय कवन बा विधि जो आसान और होखे सीधी गांव बासी समझे अपनावे बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगावे यही रफ्तार में बढ़ी आबादी विकसित राष्ट्र हुई बर्बादी दोनों जून के मिली न खाना मार झगड़ा नित्य रोजे हुई हैं रोकी न पई हैं थाना कौनो लड़िका पढ़ी ना पई हैं होई निरक्षर देश सुख संपत्ति ना सपनों मिली हैं छवले रही कलेश नाना दर के ठोकर खैब साथ दिहे ना कोई बनल बात बिगड़ जब जाई ना कोई तोहरो होई ऐसन कर समझ के काज भारत देश के बचे लाज। हमारी दूसरी कविता है कहाँ गईल पुरन का गांव कहाँ गईल ओ गुली डंडा कहाँ पुरन की खेल कहाँ बने ओ घुरहू दादा राखे सबसे मेल भोरही दादा कोल्हू नाधे ऊख पेरे भिनसारे चूल्हा पर गुरु महिया खाने दो

0: ओड़े लड़िका सारे सुबह शाम भीड़ लागे कुआना औरत भरे पानी के लकड़ी तोड़ बटोहिया लावे देवे अपनी नानी के समय से नानी खाना बनैह पकड़ब गाड़ी रेल आ कहाँ गइलो गुली डंडा कहाँ पुरन की खेल कहाँ बने वो घुरहू दादा राखें सबसे मेल कहाँ बाटे वो बारी पुरन की होखे ओल्हा पाती चिकही उड़ा कबड्डी होखे जूटे मित्र संघाती चना उखाड़ के होरहा लागे जब का हाबुस भुजाए लहसुन मिर्चा नमक चटनी लेके सब लोग खाए कैसन रहल जमाना पहले सबसे रहे मेल आ कहाँ बटे वो गुली डंडा कहाँ पुरन की खेल कहाँ बड़े वो घुरहू दादा राखें सबसे मेल अब तो गांव चिन्हाते नहीं खे भइल बदल के सहरी कहाँ लोग पकडंडी चले अब तो पीच मिले हर डहरी दिया लैंप लालटेन जलत रहे घर घर लौकत ढिबरी अब तो खम्हा गड़ल गाँवन में घर घर जलत बिजली कच्चा मकान ना दिखत आँख से गइल व्यवस्था बदली हाथी घोड़ा चढ़े ऊँट पर लोगवा पैदल जाए टैक्सी टेम्पू रहे कहाँ तब बहुते कम देखाए रहल देश मोर पहले कहवा अब कैलस सब देश से मेल आ कहाँ बटे वो गुल्ली डंडा कहाँ पुरन की खेल कहाँ बड़े वो घुरहू दादा राखें सबसे मेल पेड़ से लाभ पर्यावरण रक्षा पेड़ावा लगाव हमरे काट जानी भैया हो पर्यावरण बचाव प्रदूषण के भगाव हो पेड़ावा के खेत के मेड़वा पर लगाव हो फालतू जगह ही आके पेड़ से सजाव हो पेड़ावा से मिलला भैया पर्यावरण भरपूर हो प्रदूषण के राख देशावा से दूर हो एक पेड़ लगाव दस पुत्र के समान हो कीर्ति जस फैले देश बनेला महान हो पेड़ावा से मिलेला भैया फल फूल दवैया हो पेड़ावा की टहनी से करे लोग रसोइया हो कबीराम कृपाल रक्षा पर्यावरण कर हो प्रदूषण मुक्त जीवन यापन बनाव हो। हमारी चौथी कविता है जाड़ा के महीना में पत्नी द्वारा पति को उलाहना देना। आइल जाड़ा का महीना सैया तोहके ना बुझाता हमहू बीमार सोनुआ पढ़े न कहाँ जाता जोधना के जंघिया नहीं खे मंगरी के साल हो हमारी तन के लुगा नहीं खे घर के लोग बेहाल हो गइल कमाए पिया असरा धराई के छोट बड़ सबके रखी है तूह समुझाई के केतना ले सही दुख अबना सहाता आइल जाड़ा का महीना सैया तोहके ना बुझाता भोरही में भोजन कैसे सैया हम बनाई अम्मा जी के दीहल गारी कैसे बताई गौआ पड़ोसियन से पूछ ली है आई के भोरही नहाई कैसे कहाँ हम जाई के लाजो उनका लागत नहीं खे कर ताड़ी झगड़ा चुपे चली जात तबो करत बाड़ी रगड़ा निखी दिन का गारी उनका हमसे ना सहाता आइल जाड़ा का महीना सैया तोहके ना बुझाता साल औरी चादर तोसक फाटल बा रजाई छोटा का के स्वीटर नहीं खे कई से मगाई छोड़ी के बाहर सैया घरे चली आव कुटीर उद्योग धंधा घरे अपनाव कर के उद्योग लोग आगे बढ़ल जाता आइल जाड़ा का महीना सैया तोहके ना बुझाता।
1: भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश समार में अभी आप सुन रहे थे राम कृपाल यादव से उनका भोजपुरी कविता पाठ। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में आइए सुनते हैं राजस्थानी लोकगीत।

प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत, और इसी के साथ हमारा प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओं, शाम 7:31 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ मशहूर फिल्मी कवालियाँ। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संगीता मिश्रा से उनकी हिंदी वार्ता, विषय होगा बिरसा मुंडा।

रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार होंगे जगजीत सिंह। फिल्म संगीत आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज रात 10 बजे।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विदुषी श्रुति सादोलिकर का शास्त्रीय गायन राग होगी नेकी कान्हड़ा। अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: या बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कल अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी की रिमांड को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज

0: में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीन स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
1: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो, एक पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
2: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
0: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय UPTET परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक मानें। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में PFRDA के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
4: यूपी का एपीवाई स्कीम में काफी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 9,25,00,000 से ज्यादा लोग इस एपीवाई स्कीम में जुड़ चुके हैं। तो इस परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि यूपी का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणीकरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त राजेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ फिल्मी कवालियाँ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली कवाली, जिसे हमने लिया है फिल्म बादशाहों से। श्रोताओं, एक अत्यंत लोकप्रिय सूफी कवाली है जो अपने प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक भावों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस कालजई कवाली को प्रसिद्ध पाकिस्तानी सूफी गायक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने अपनी प्रभावशाली आवाज़ में अमर बनाया। बाद में इसे अनेक कलाकारों ने भी प्रस्तुत किया। तो आइए सुनते हैं फिल्म बादशाहों की ये कवाली।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: श्रोताओं, और आइए सुनते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान की ये खूबसूरत सी कवाली। श्रोताओं, एक अत्यंत प्रसिद्ध भक्ति गीत कवाली है जो अल्लाह से दुआ और रहमत की याचना के भाव को व्यक्त करता है। इस गीत को कई प्रसिद्ध गायकों ने प्रस्तुत किया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध संस्करण साबरी ब्रदर्स और अतीफ असलम का है। तो आइए सुनते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान की एक

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।

0: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
1: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
0: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
2: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
1: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
2: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरयार।
3: श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं फिल्मी कवालियां। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम कवाली, जिसे हमने लिया है फिल्म हिना से।

और श्रोताओं, इस कवाली के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप अपने दोस्त राजेश पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संगीता मिश्रा से उनकी हिंदी वार्ता। विषय है बिरसा मुंडा।
1: बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास में एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। बिरसा मुंडा 19वीं सदी के एक प्रमुख आदिवासी जननायक थे। उनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में मुंडाओं के महान आंदोलन उलगुलान को अंजाम दिया। बिरसा को मुंडा समाज के लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 रांची जिला में हुआ और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 रांची में हुआ। 1875 में झारखंड के आदिवासी दंपति सुगना और कर्मी के घर में बिरसा को ने जन्म लिया। इनके गांव का नाम उलीहातू था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई सालगा गांव में हुआ। इसके बाद ये चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने आए। इनका मन हमेशा अपने समाज की ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचता रहता था। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को भी ठीक से न समझ पा रहा है, न ग्रहण कर पा रहा है। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि समाजवादी कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी

0: समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ईश्वर मान लेते हैं। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण के नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें तीन स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिजड़े से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, पाखंडी झाड़ फूंक करने वालों की दुकानदारी भी ठप हो गई। यह सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए। इन्होंने बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की काली कारतूतें प्रारंभ की। यह तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गए। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना। चूंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगाती थी, अतः राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एक लव्य और स्वामी विवेकानंद थे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी। काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को संसद में डाल दिया था। बिरसा अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और उनकी पूजा की। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। विद्रोह में भागीदारी और उनका अंत। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा तथा उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। बिरसा मुंडा ने सन 1900 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हुए कहा, हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेजी नियमों का पालन नहीं करेंगे। उसने कहा, ओ गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इससे हमसे छीन नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश को लौट जाओ, वरना लाशों के ढेर लगा दिए जाएंगे। ये घोषणा पत्र में अंग्रेजों के पास भेजा गया तो अंग्रेजों ने अपनी सेना बिरसा को पकड़ने के लिए रवाना कर दी। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम रखा। अब बिरसा भी तीर कमान और भालों के साथ युद्ध की तैयारियों में लग गए। जनवरी 1900 डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ जिसमें बहुत से औरत और बच्चे मारे गए। उस समय बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर जेल में उन्हें धीमा जहर दिया था, जिस कारण वे 9 जून 1900 को शहीद हो गए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें उनकी मौत का कारण हैजा बताया, जबकि उनमें हैजा के कोई लक्षण नहीं थे। केवल 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज भी बिहार, झारखंड और उड़ीसा की आदिवासी जनता उनको याद करती है और उनके नाम पर कई शिक्षण संस्थानों के नाम रखे गए हैं। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे, जिनकी ख्याति अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी हुई थी। उनके द्वारा चलाया जाने वाला सहस्राब्दवादी आंदोलन ने बिहार और झारखंड में खूब प्रभाव डाला था। इतने कम वर्षों के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल कर लिए थे कि आज भी भारत की जनता उन्हें याद करती है और भारतीय संसद में एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का चित्र टंगा हुआ है।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीता मिश्रा से उनकी हिंदी वार्ता बिरसा मुंडा। और इसी के साथ हमारा हिंदी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार हैं जगजीत सिंह। तो आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं।

0: धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस समय आज आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह को।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह को।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को, और इसी के साथ हमारा सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया और पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों की यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने

भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहाँ संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधार कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय

0: कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया।

अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 trillion के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.093 यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो फिल्में थीं संबंध, पिया का घर, बातों बातों में, सफ़र, काला पत्थर और जिस देश में गंगा बहती है। स्वर दिया था मुकेश, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। और इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विदुषी श्रुति सादोलीकर का शास्त्रीय गायन। राग है नेकी कान्हड़ा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी श्रुति सादोलिकर का शास्त्रीय गायन, राग थी नेकी कान्हड़ा। और इसी के साथ हमारा शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10

मिनट और 30 सेकेंड हो रहे हैं। हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:55 पर अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।